नमस्कार। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 8:55 होने को है। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब एक नजर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम रूपरेखा में। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुबह के ठीक 9 बजे। भक्ति रचना रामचरितमानस गान का समय रहेगा सुबह के 9:10 पर, और दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। संगीत से जुड़ा साजों पर धुन कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:40 पर। गाने पुराने जमाने के आप सुन सकेंगे सुबह के 10 बजे। गाने नए तराने ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन के 10:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा दिन के 11:00 से 1:00 तक, और हिंदी में प्रादेशिक समाचार पुनः सुन सकेंगे आप दिन के 1:00 से 1:00। दिन के 1:05 से शाम के 5:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम के 5:00। कार्यक्रम परिहारी आप सुन सकेंगे शाम के 5:30 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम के 6:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम के 6:05 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा शाम के 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम के 6:30 और 6:45 पर, जिससे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा शाम के 7:00, जिसे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 8:00। लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी का समय रहेगा रात्रि के 8:30 पर, और दर्द भरे गीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:00। समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर, और रात्रि 9:15 से सभा के संपन्न होने तक आप सुनेंगे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम विवरण में कार्यक्रम रूपरेखा की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम पर 11 देशों के बीच चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 71% मतदान हुआ। सबसे अधिक 91.59% वोट बालोतरा के धोरी मन्ना में डाले गए, और लंपी रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क, पशु मेले और हाट बाजारों पर रोक लगाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान देशों के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स बिजनेस फोरम सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री नाविकों की सुरक्षा का प्रबल समर्थक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
2: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: फोरम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां सहित कई वैश्विक नेताओं ने भी संबोधित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश के हर जिले में शी मार्ट स्थापित करने पर जोर दिया है। मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में श्री कंसल ने कहा कि शी मार्ट के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा, साथ ही हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दौरान राजीविका विकसित भारत जीराम जी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की गई। श्री कंसल ने राजीविका के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने के लिए क्लस्टर विकसित करने और ई सरस मेले आयोजित करने का भी सुझाव दिया। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश को 2,89,000 नए आवासों का लक्ष्य मिला है। इनकी स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना सोमवार से ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनाथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनाथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनकी युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 71% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 87,63,595 मतदाताओं में से 61,93,865 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही दोनों चरणों में प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में कुल मतदान 72.95% रहा। दूसरे चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं सहित 147 नगरीय निकायों के लिए वोट डाले गए। इस दौरान 4,474 वार्डों के लिए 9,758 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 18,266 उम्मीदवार मैदान में थे। आयोग के अनुसार दूसरे चरण में बालोतरा जिले की धोरी मन्ना नगर पालिका में सबसे अधिक 91.59% मतदान हुआ, जबकि सिरोही नगर परिषद में सबसे कम 62% मतदान दर्ज किया गया। इससे पहले 9 सितंबर को हुए पहले चरण में 162 नगरीय निकायों में 76.42% मतदान हुआ था। दोनों चरणों के मतदान पूरा होने के बाद अब मतगणना 14 सितंबर को होगी। प्रदेश में लंपी रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए पशु मेलों और पशु हाट बाजारों पर रोक लगा दी गई है। पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना ने जयपुर में लंपी रोग की स्थिति और नियंत्रण उपायों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश के 10 जिले लंपी रोग से प्रभावित हैं, जिनमें अधिकतर पूर्वी राजस्थान के हैं। डॉ. मीना के अनुसार सक्रिय गौवंशों में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला तथा राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष और त्वरित प्रक्रिया दल गठित किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम जी भाले ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर बीमार पशुओं का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। पाली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी महेश सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर युवाओं को कार्यक्रम के उद्देश्यों, पंजीकरण प्रक्रिया और प्रतियोगिता के अलग अलग चरणों की जानकारी दी जा रही है। पहले चरण में क्विज आयोजित की जा रही है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में राजस्थान और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके पाली निवासी युवा मनीष सोमनानी ने अधिक से अधिक युवाओं से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है।
3: माय भारत ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया तो मेरे आइडियाज, मेरी स्किल्स थी वो मेरे को नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक और विकसित भारत में मैं अपना योगदान कैसे दे सकता हूं। तो आपसे सबसे मैं आह्वान करता हूं, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपने स्किल्स का अपने अलग अलग ट्रैक्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए और इसमें अपनी सहभागिता कीजिए और आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का नाम नेशनल लेवल पर रोशन कीजिए।
1: प्रदेश में रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मेला और रामदेवरा मेला आज से शुरू हो रहे हैं। दोनों मेलों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन और रेलवे की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम पर 11 देशों के बीच चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 71% मतदान हुआ और लंपी रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क, पशु मेले और हाट बाजारों पर रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति रचना रामचरितमानस गान।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना रामचरितमानस गान। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है भक्ति संगीत की पहली प्रस्तुति जगजीत सिंह के स्वर में।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: लीजिए सुनिए अनुप जलौटा के स्वर में ये अगली भक्तिमय प्रस्तुति।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7:00 प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
2: लीजिए सुनिए चित्रा सिंह और जगदीश सिंह की जुगलबंदी में ये भक्ति संगीत की आखिरी पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम साजों पर धुन।

श्रोताओं, ये है साजों की धुन कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में एआर रहमान के संगीत से सजी ये धुन, जिसे बांसुरी और गिटार की जुगलबंदी में सजाया है। फिल्म का नाम रोज़ा।

लीजिए सुनिए, नदीम श्रवण के जुगलबंदी में ये साज फिल्म बरसात से। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें है वायलिन, पियानो, बांसुरी, सिंथेसाइजर और ढोलक।

लीजिए धुन, साजों की धुन में अब सुनिए कल्याण जी आनंद जी की रचित ये धुन फिल्म ब्लैकमेल से, जहां पर गिटार और एकॉर्डियन के सुंदर संगीत से संयोजन किया है इस धुन का।

जोड़ी से, जिसे संगीतकार सलीम सुलेमान ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा को दर्शाया है इस संगीत की धुन में। यहाँ पर गिटार और बांसुरी का अनोखा संगम है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 103.7 MHz पर कार्यक्रम साजो की धुन में कुछ धुनें। ये जो धुन है वो ली है फिल्म रब ने बना दी।

यह है साजो की धुन का कार्यक्रम का अगली और आखिरी धुन फिल्म दिल मांगे मोर से। इस धुन को बनाया है हिमेश रेशमिया ने पियानो और कुछ अन्य वाद्य यंत्रों को जोड़कर।

सेक्सोफोन और कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के मिले जुले संयोजन से अभी आप सुन रहे थे दिल मांगे मोर की धुन, जिसे हिमेश रेशमिया ने बनाया था। और इसी के साथ कार्यक्रम साजो की धुन अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के।

0: ये है फिल्म संगीत की पहली पेशकश अलका याग्निक और साथियों के स्वर में फिल्म तेजाब से। जावेद अख्तर के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: करती हूँ मिन्नतें बात।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के अंतर्गत फिल्म संगीत की ये अगली पेशकश बप्पी लहरी अनुराधा पौंडवाल और साथियों के स्वर में फिल्म थानेदार का ये गीत। शब्द रचना इंदिवर की, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के, और यह है इस कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म नागमणि से। शब्द रचना संतोष आनंद की, संगीत दिया है अनु मलिक ने और इसे गाया है सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल ने।

गाने पुराने जमाने के। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इस नई सदी के कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली पेशकश में अरिजीत सिंह और साथियों के स्वर में फिल्म जब हैरी मेट सेजल का ये गीत। इरशाद कामिल के बोलों को संगीत से सराबोर किया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए में। यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश अरिजीत सिंह और साथियों के स्वर में क्रिएचर 3D में से। शब्द रचना और संगीत दिया है टॉनी कक्कड़ ने।

लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म छिछोरे का ये गीत। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

लीजिए सुनिए फिल्म दो लफ्जों की कहानी का ये गीत। आहटे शब्द रचना मनोज मुत्तशिर की, संगीत दिया है अरमान मलिक ने और इसे गाया है अरमान मलिक ने ही।

लीजिए सुनिए मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के मिले जुले स्वरों में फिल्म किस्मत कनेक्शन का ये गीत। शबीर अहमद के बोलों को संगीत से सराबोर किया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म ए दिल है मुश्किल का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीतबद्ध किया था प्रीतम चक्रवर्ती ने। और इसी साथ कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, माफ़ कीजिएगा, गाने नए तरन नए, ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है शक्ति।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला और शिकायती गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है नगीना।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ, सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अमित कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रपट संगीत में अगला और अंतिम गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है चालबाज।

0: दोस्तों नमस्कार, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
4: पहला ठिकाना बना
5: चर्च
4: गेट इलाके में, और वो है मुंबई यूनिवर्सिटी के राजाबाई टावर के ठीक सामने, महर्षि कर्वे रोड पे वो बिल्डिंग है।
5: अच्छा,
4: क्वींस कोर्ट। और अगर आप देखें तो जो वास्तविक मुंबई है वही इलाका है चर्च गेट के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में। जितनी चीजें हैं मुंबई को लेके, चाहे इतिहास से जुड़ी हो या संस्कृत से जुड़ी हो या राजनीति से जुड़ी हो या मुंबई के विकास के जुड़ी हुई, सारी की सारी चीजें उसी 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी। चाहे विक्टोरिया टर्मिनस हो, चाहे और भी चीजें हो, लायन गेट हो जहां नौसेना विद्रोह हुआ था,
5: रीगल
4: टॉकीज हो, ओवल मैदान हो, क्रास मैदान हो, आजाद मैदान हो, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। तो उस इलाके में रहते रहते मुंबई के बारे में मुझे प्रेम जगा, एक मोहब्बत जगी, जिसको आप इश्क कह सकते हैं। तो मैं मूल रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने के लिए आया था।
5: अच्छा।
4: तो मेरे बैच के जितने भी लोग थे वो एक एक करके समय आने पर मुंबई से ट्रांसफर करवा के अपने गांव की ओर चले गए, लेकिन मुंबई के प्रति प्रेम की वजह से मैं रुका रहा। और 1990 के आसपास फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो पहला मतलब मेरी नजर में आया कि जिस शहर ने मुझे रोजी रोटी दी है, उस समय तो रोजी रोटी ही थी, नाम और सम्मान की कोई बात ही नहीं थी, संघर्ष का दिन था। तो मैंने सोचा कि मुंबई पे लिखना शुरू करना चाहिए। और आप ये देखिए, विसंगति देखिए कि मैं गंभीर लिखता हूं मुंबई पे, लेकिन जो मैंने पहला लेख लिखा था वो जो था ये था, ये है बॉम्बे मेरी जान, और वो व्यंग लेख था मुंबई पे, वो मेरी शुरुआत थी।
5: जी, जिस इलाके से आपने शुरू किया, आपने बताया कि क्वींस कोर्ट वाला इलाका था जहां आपकी रिहाइश बनी, साउथ बॉम्बे का वो इलाका जहां चारों तरफ इतिहास बिखरा हुआ है, और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो भी उसी इलाके में है। तो आपका जो आना जाना, आपका जो काम काज है वो पूरा साउथ मुंबई में हुआ। वो कौन सी चीजें थी दक्षिण मुंबई की जिन्होंने आपको बहुत फैसिनेट किया?
4: वो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मेरे सामने वो राजाबाई टावर मुंबई यूनिवर्सिटी का, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको पता होगा वाटसन होटल,
5: बिल्कुल, जहां मुंबई का पहला सिनेमा दिखाया।
4: यस, पहला ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने वहां पहला सिनेमा दिखाया। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े लोग मोहम्मद अली जिन्ना से लेके मार्क ट्वेन तक उस वाटसन होटल में ठहरे। और एक बात और भी, आज तो 5 स्टार 7 स्टार का जमाना है सर, उस जमाने में जब स्टार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये वाटसन होटल जो है 7 स्टार के तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता था। जब मैं वाटसन होटल से गुजरता था 1990 के दशक में, तो मुझे जब मैं लगता था उसकी हालत देख के, बाद में तो उसका रिनोवेशन होने लगा, तो मैं देखता था तो मैं सच में अंदर से रोता था कि जिस होटल ने, जिसमें ल्यूमियर्स ब्रदर ने पहली फिल्म दिखाई, और जो होटल इतिहास का गवाह है, आप देखिए उसकी दुर्दशा।
5: ना लोगों को ये पता है कि ये वो जगह है, ना कोई बोर्ड
4: कुछ
5: है,
4: नहीं। और या आप क्रॉफर्ड मार्केट की ओर अगर थोड़ी दूर पे जाएं, चर्च गेट इलाके से 1.5 किलोमीटर दूर, तो क्रॉफर्ड मार्केट की भी दुर्दशा। इस तरह की चीजों को देख के जो मेरे मन में आया कि मुंबई पे लिखना चाहिए। और थोड़ी दूर पे लायन गेट था,
5: जी,
4: आपको पता है कि रॉयल नेवी का जो बहुत बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी शुरुआत वहीं से हुई,
5: बॉम्बे और कराची वाला।
4: यस, वो जो विद्रोह था बॉम्बे वाला, और वो एक साथ कई जगहों से हुआ है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आप सब पता होगा क्योंकि आप भी मुंबई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जहां पे ये महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय है वो जगह पहले कब्रिस्तान थी, मेडम पॉइंट एक जमाने में, क्योंकि इस इलाके में पूरा का पूरा इतिहास बिखरा है। हालांकि सर मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन वहां से जो मुंबई को लेके एक रुचि उत्पन्न हुई वो बराबर चलती रही। 2012 में मुंबई पे मेरा पहला काम आया, एक मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद।
5: मराठी क्या पुस्तक थी?
4: मराठी पुस्तक थी मुंबई तील गुनेगारींचा एनसाइक्लोपीडिया, मेरे मित्र श्री प्रभाकर पवार जी की मराठी में पुस्तक, वो दैनिक सामना से जुड़े थे और 1993 से मैं दोपहर का सामना से जब जुड़ा तो मैंने 2012 में उसका अनुवाद किया, मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया। मुंबई पे मेरा पहला
5: मतलब क्राइम वाला पूरा काम जितने डॉन हुए हैं
4: जी, मेरी दिलचस्पी थी और फिर उसके बाद चलता गया और 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि पूरे के पूरे 5 सालों तक दोपहर का सामना में मेरा एक कॉलम छपता था आमची मुंबई, मुंबई के इतिहास पे।
5: उसमें आप लगातार इतिहास पर काम करते थे
4: लगातार, और 2019 में मेरी पहली किताब आई आमची मुंबई
5: जी।
4: और जब आमची मुंबई आई, आपने बात की आमची मुंबई 2 की, जब आमची मुंबई आई 2019 में तो वो आमची मुंबई जो है वो अखबारी लेखन था। अखबारी लेखन की एक सीमा होती है और मुंबई पर काम करने की सर मेरी भूख इतनी थी कि किसी अखबार के कॉलम से वो मिट नहीं सकती थी। तो 2019 से, क्योंकि कई कई कहानियां इतनी रोचक थी, इतनी बड़ी थी कि वो अखबार के कॉलम में समाहित हो नहीं सकती थी, तब मैंने 2019 में आमची मुंबई 2 पे काम करना शुरू किया जो पिछले साल 2025 में आई।
5: क्या बात है, तो दो बड़ी किताबें मुंबई के इतिहास पर ये नजर आती हैं और उसके अलावा मुंबई के माफिया पर भी आपकी किताब है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि मुंबई के इतिहास पर काम करना इतना आसान नहीं है, तो किन लाइब्रेरीज की और ग्रंथों की खाक छानते हुए आपने तथ्य जमा किए और ये कितना मुश्किल था?
4: वो एक बड़े इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक ये है कि हम उससे कोई सबक नहीं लेते। जब हम इतिहास पे शुरू करते हैं तो हमको अपना जो नजरिया है बहुत विस्तृत करना पड़ता है और ज्यादातर अगर देखा जाए तो आज इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जो है अगर किसी पे भरोसा करता हूँ इस मामले में ग्रंथालय की, तो दो है। पहले नंबर पे एशियाटिक लाइब्रेरी है, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी प्रचार सभा की लाइब्रेरी है और जो मेरे संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का पुस्तकालय भी है वो बहुत समृद्ध है।
5: अरे गजब,
4: वहाँ हिंदी अंग्रेजी मराठी की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, रेफरेंस की पुस्तकें हैं, तो वहां से मैंने शुरू किया। इस बारे में मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, लगातार रिसर्च करता हूँ। मैं सर आपको रिसर्च का एक उदाहरण देना चाहूंगा
5: जी,
4: कि आम धारणा है कि मुंबई जो है 7 द्वीपों से बनी है, उसमें मुंबई द्वीप जो मुख्य द्वीप है और माहिम है, फिर कोलाबा है, मझगांव है, वर्ली है, ओल्ड वुमन आइलैंड है, लिटिल कोलाबा है, इस तरह के 7 द्वीप हैं, आम धारणा है। लेकिन हकीकत यह है कि आप किस तरह से कहते हैं कि मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे, मेरी पुस्तक आमची मुंबई 2 का पहला लेख है वह 7 द्वीप जिनसे मिलकर मुंबई बनी, लेकिन उसी पुस्तक में 7वां लेख है क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। हकीकत में आप 7 द्वीप कहते कैसे, वो थियरी आई कहां से? मुंबई पे इतिहास के शोध किया है मिस्टर टिम राइडिंग ने, बहुत बड़ा शोध है उसने, उनका कहना है कि 7 द्वीप नहीं थे, जो 7 द्वीपों की बात है तो वो 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो मिथक और भ्रांति से आई। एक्चुअली वो जो द्वीपों की संख्या है 4 से 6 है ओरिजिनल। रॉबर्ट मर्फी ने इस प्रश्न को उठाया भी, उन्होंने एक नक्शा भी बनाया जिसमें चार या छह द्वीप, क्योंकि वो दो को गिनते नहीं थे, मझगांव और परेल उनकी नजर में द्वीप अलग अलग नहीं थे,
5: वो लैंडलॉक एरिया है।
4: हाँ, लेकिन उसके बाद हकीकत में जो सात द्वीपों की थियरी आई सर, वो ईस्वी सन 150 में टॉलेमी का एक ग्रंथ है ज्योग्राफी का, पूरा नाम है लेंडास द ज्योग्राफिका, यानी कि भूमि का भौगोलिक शास्त्र। उसमें जो है मुंबई यानी पूर्व में स्थित एक जगह का जिक्र जो है हेप्टानेशिया के रूप में किया गया है। हेप्टानेशिया का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है सात। तो जो सात का मिसकंसेप्शन है वो उधर से आया, ओरिजिनल वो छह द्वीप से ज्यादा नहीं थे। तो हमको इस चीज को खोजने के लिए जो टिम राइडिंग का शोध था, बहुत लंबा चौड़ा शोध था, तो मैंने कम से कम उसकी तीन जगहों पे क्रॉस चेकिंग की, जो यहाँ लिखा है वो सच है क्या, क्योंकि जब हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किताब के जरिए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि कभी किसी पाठक ने ये बताया कि सर ये आपने गलत लिखा है। तो उसमें मैंने दो तीन लाइब्रेरी की खाक छानी और कई कई चीजें हमको मिली, तो उससे लगा कि नहीं, जो टिम राइडिंग का शोध है वो अपनी जगह पे सही है, रॉबर्ट मर्फी का भी शोध सही है, जॉन थॉर्नटन का एक नक्शा था वो भी सही है। तो इस ढंग से इस शोध में होता है, एक सिर्फ छोटी सी घटना, एक छोटे से प्रसंग को लेके मैं इस शोध की बात और आगे बढ़ाऊंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, आजादी की पहली लड़ाई, तो वो और जगहों की तरह मुंबई में भी हुई। मुंबई में हुई का मतलब यह है उसको करने की कोशिश की गई। मरीन बटालियन के कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने मिलके ये योजना बनाई। उनकी योजना थी कि नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे मुंबई में। लेकिन उस जमाने में मुंबई का कमिश्नर था चार्ल्स फोरजेट। फोरजेट का जो इंटेलिजेंस था वो बहुत गहरा था, बहुत अच्छा था। तो सोनापुर यानी मरीन ड्राइव के इलाके में, मरीन लाइंस के इलाके में क्रांतिकारियों की, सैनिकों की बैठक होती थी। फोरजेट खुद भेष बदल के उसमें गया, उस बैठक में, और वहां से ये योजना जो है, इस योजना का पर्दाफाश हो गया। मुंबई पुलिस ने, चार्ल्स फोरजेट ने उस क्रांति को जो है उसको एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया और कई लोगों को उसमें सजाएं मिली, जिसमें दो लोगों को आजाद मैदान में, उस जमाने में कांपा का मैदान कहा जाता था, तोप से तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। दो सिपाही, मंगल गडरिया और सैयद हुसैन। क्योंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिशों का शासन था, तो किसी भी पुस्तक में मंगल गडरिया और सैयद हुसैन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलता है। मुझे खोजबीन के दौरान कम से कम एक ही मुद्दे पे मैं 6 महीने लगा था, तो कहीं से सिर्फ इतना पता चला कि मंगल गडरिया जो था वो मूल रूप से गोंडा के गांव का निवासी था और सैयद हुसैन लखनऊ के आसपास के। तो ये मेरी, अभी भी मुंबई के कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों का ओरिजिन अगर किसी ने खोजा या थोड़ी सी ही जानकारी मिली तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने खोजा। लेकिन उसमें 6 महीने सिर्फ एक ही तथ्य खोजने में चले गए। इतिहास के साथ सर ये होता है
5: जी। तो इतनी मशक्कत करने के बाद तथ्य आपने जमा किए, इन दिनों आप किस किताब पर काम कर रहे हैं?
4: इन दिनों का ये है मेरी पुस्तक साहित्य और मुंबई। और एक्चुअली मुंबई के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि यहाँ साहित्य सृजन की, लेखन की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है और ये शहर प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो साहित्य और मुंबई में मैंने 5 भाषाओं पे फोकस किया है, जैसे मुंबई के साहित्य, संस्कृति और इतिहास पे लिखी गई पुस्तकें, नॉन फिक्शन, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी। इसी तरह मुंबई को लेकर लिखे गए उपन्यास, इन 5 भाषाओं में उनका जिस्ट, उनका सारांश, मुंबई पे लिखी गई कविताएं इन 5 भाषाओं में, मुंबई पे लिखी गई कहानियां इन 5 भाषाओं में, मतलब इस तरह के काम हुए हैं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, सन 1817 में शहर की पहली शहरी जीवनी उर्दू में छपी।
5: वाह वाह।
4: लेकिन वो छपी कहाँ? मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ।
5: अरे क्या
4: शहर की पहली जीवनी। हाँ हाँ। तो आप उसमें इस तरह की किताबों का जिक्र देखेंगे, बुक ऑफ बॉम्बे को पढ़ेंगे, मुंबई का वृत्तांत पढ़ेंगे, मुंबई के वर्णन गोविंद नारायण माडगांवकर की किताब है
5: जी।
4: और जेम्स मैकलिन की गाइड टू बॉम्बे, इस तरह की किताबों पे पढ़ेंगे और बहुत सारी हिंदी मराठी गुजराती उर्दू और अंग्रेजी की किताबों कहानियों और कविताओं की चर्चा उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे
5: जी। तो ये भी बहुत मशक्कत का काम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है।
4: पिछले साल जुलाई से चल रहा है उस पे शोध और अभी 3-4 महीने और लगेंगे सर।
5: तो क्या देश के अलग अलग इलाकों में जाना पड़ता है या
4: नहीं? मुंबई
5: में,
4: मुंबई पे काम, मुंबई की लाइब्रेरियों में काम, मतलब इस तरह के विद्वानों से मिलना जो साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी गुजराती मराठी उर्दू के विद्वानों से लाइब्रेरियों में जाना, पढ़ना, उधर से तथ्य निकालना।
5: मुंबई माफिया पर जो आपने काम किया है, ये इतिहास कितना पुराना है?
4: ये बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जब से ये मोस्टली जो इतिहास है 1950 के दशक से,
5: आजादी के बाद का,
4: आजादी के बाद के दशक का, तब छुरे और गुप्ती वाले थे, उन्होंने शुरू किया। और दूसरी बात, 60-70 के दशक में वो गोल्डन गैंग वगैरह लोग आए, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 80 के दशक से मुंबई माफिया का प्रभुत्व तो बहुत तेजी से शुरू हुआ। हाँ, जब वो हाजी मस्तान, करीम लालदा, शुक्र नारायण बकिया, दाऊद वगैरह का तो बहुत बाद में प्रवेश हुआ, फिर मतलब धीरे धीरे आज भी है, लेकिन अब हम ये, एक जमाने में मुंबई को हम माफिया सिटी बोल सकते हैं, लेकिन अब नहीं बोल सकते। अब तो बहुत शांत और बहुत सुव्यवस्थित और बहुत समृद्ध महानगर है आमची मुंबई, जिससे मुझे बहुत गहरा प्रेम है। तो इसलिए मुंबई के माफिया पक्ष की या मुंबई के निगेटिव पक्ष को मैं बहुत सिंबॉलिक रूप से कहता हूँ, उसकी बजाय मेरी नज़र में मुंबई के और जो सर्वसमावेशी संस्कृति है, मुंबई की समृद्धि है, सबको अपना बनाने की एक जो यहाँ की मिट्टी में तासीर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
5: मुंबई सदा से मिनी हिंदुस्तान रहा है, इसका फूड कल्चर, सिनेमा की संस्कृति, इन सब पर लिखा आपने?
4: हर तरह से, जब मैंने मुंबई पे कॉलम लिखता था तो मैंने मुंबई की नाइट लाइफ पे लिखा, सिनेमा पे लिखा, फिल्म स्टूडियोज की सोकांतिका पे मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, आमची मुंबई वन में वो लिखेंगे, और खान पान की जो संस्कृति है उस पे, उन सब पे भी मेरी कोशिश रही कि हर चीज यहाँ पे मुंबई का जो भाषाई परिदृश्य है, मेरी उस पे भी एक पुस्तक आई है, मुंबई और हिंदी
5: जी,
4: हिंदी
5: तो
4: को लेकर।
5: मुंबई में हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, ये भाषाएं मुख्य रूप से चलती हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान है, इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इस पर आपने गौर किया?
4: बिल्कुल गौर किया, मुंबई में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा कुल 16 भाषाएं हैं जिनको मुंबई की मुख्य भाषा होने का दर्जा प्राप्त है।
5: 16 भाषाएं?
4: हाँ, 16 जो मुख्य भाषाएं हैं। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि मुझे जैसे आपने मिनी हिंदुस्तान की बात की, मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुंबई या महाराष्ट्र और मुंबई पूरे देश में इस वजह से अलग है कि मुंबई की सर्वसमावेशी संस्कृति है, दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं यहाँ पर आपको उन धर्मों के लोग मिल जाएंगे, और उनमें एक जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, उनके दर्शन होंगे, इसलिए मैं मुंबई को मिनी हिंदुस्तान से ज़्यादा एक लघु विश्व का दर्जा देता हूँ, जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर देश के लोग मिल जाएंगे।
5: ये जो लघु विश्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे पकड़कर हम दूसरी दिशा में जरूर जा सकते हैं, जहां मुंबई में दूसरे देशों के लोगों की

0: किया था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि किस ढंग से जुड़ा है, ये जो नारे हैं क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या करो या मरो, या साइमन गो बैक, ये दो तीन महत्वपूर्ण नारे पूरे देश में गूंजे। लेकिन ये नारे गढ़े किसने? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये गढ़े मुंबई कर यूसुफ मेहर अली जी ने।
1: ओहो हो,
0: उन्होंने मतलब क्विट इंडिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो या साइमन गो बैक। महात्मा गांधी जी मतलब ने यूसुफ मेहर अली जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इस तरह को, इस चीजों को किस तरह से कर सकते हो। तो उन्होंने ये दो तीन नारे गढ़ के दिए और पूरे देश भर में गूंजे। साइमन गो बैक के नारे वो पंजाब में भी गूंजे या पूरे देश भर में। एक और महत्वपूर्ण इस मामले में एक और है जो आजादी की लड़ाई में मुंबई के योगदान से संबंधित है। एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
1: बाबा,
0: ये कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक का नारा है
1: जी।
0: लोकमान्य तिलक जी ने इसको फेमस किया, इसको विख्यात किया, लेकिन ओरिजिनली इस नारे को लिखा और गढ़ा जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने, मझगांव में उनके नाम पे गार्डन है। तो मुंबई में इस तरह की कहानियां हैं। और मैंने आपको,
1: ये तो बहुत शॉकिंग है।
0: हाँ यस, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 1857 में मेरठ में और जगहों पे क्रांति, मुंबई की क्रांति का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं आता
1: जी।
0: लेकिन वो बॉम्बे प्लाट के नाम से, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो बॉम्बे प्लाट के नाम से ये पूरी की पूरी क्रांति, जो मैंने सैयद हुसैन और मंगल गडरिया की कहानी बताई आपको, जो प्रसंग बताया वो पूरा का पूरा है। और अक्टूबर 1857 में, 10 अक्टूबर 1857 को मंगल गडरिया और सैयद हुसैन को आजाद मैदान में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। तो मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है
1: जी। अच्छा, भारत में जो रेलवे मूवमेंट शुरू हुआ,
0: हाँ,
1: वो तो जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुआ, और 1853 में जो मुंबई से ठाणा तक ट्रेन चलाई गई, और इस रेल मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ, रेल मूवमेंट के बारे में, ये सपना था कि एक रेलवे होना चाहिए, और हमारे लिए गर्व की बात है कि जगन्नाथ शंकर सेठ, नाना सेठ ने इस बारे में बहुत सारा काम किया था। उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई, उसके बाद इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनी, जिसका विलय ब्रिटिश सरकार की संस्था में हुआ, और वो 1853 में वो ट्रेन चली। लेकिन एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मुंबई सीएसटी से लेकर थाना तक उस जमाने में मतलब रिहाइश जो है एकदम ये थी, और दूसरी पहाड़ियां थी छोटी छोटी, और जो इलाका है मझगांव वगैरह या जहां से रेल गुजरती थी, या आगे चल के पुल बनाना है, बहुत कठिन काम था। और लोग ये कहते हैं कि ये सब ब्रिटिश सरकार की वजह से ही संभव हुआ, अगर ब्रिटिश सरकार न होती तो 1853 में जो मुंबई से थाना तक पहली ट्रेन चली वो ट्रेन चल नहीं पाती।
1: जो रेलवे स्टेशन थे वो तो आज जहां है वहां से बहुत अलग जगहों पर हुआ करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: तब के जमाने का जो भौगोलिक वो डेमोग्राफी थी सर, तब के जमाने की अलग थी और आज के जमाने की अलग थी,
1: तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: हाँ, तब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इस तरह की जगहों पे रेलवे स्टेशन होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्बल के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जमीन से बहुत ऊपर है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट का नतीजा है
1: जी। बहुत बढ़िया, आपसे तो बातें जो हैं वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, पर बहुत अच्छा लगा मुंबई के इतिहास पर जिस तरह से आपने काम किया है। आमची मुंबई वन, आमची मुंबई टू, मुंबई माफिया, मुंबई और हिंदी, मुंबई और साहित्य, ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत दिलचस्पी जगाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए, और मुझे लगता है कि जब हमने सब चीजों की बातें की तो चलते चलते मुंबई पर एक फिल्मी गाना भी आपकी पसंद का सुनवा लिया जाए।
0: सिर्फ यही है, जरा हटके जरा बचके, ये है मुंबई मेरी जान,
1: सीआईडी फिल्म का ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज है। सुनते हैं ये गाना।

0: मेरी जान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश विक्रांत जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर।
3: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
4: ये विविध भारती है, दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: सफल और लोकप्रिय जोड़ी बनाई थी और भारतीय संगीत का नक्शा बदल दिया था। तो आज हम याद कर रहे हैं और आज हम सुनेंगे महान संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत से सजे सवरे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जंगली।
2: जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है श्री 420।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है कन्यादान।

0: la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
0: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है धरती।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर।

कार्यक्रम में अगली आवाज है मुकेश की। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दीवाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है राज हट।

0: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर जय।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने सुने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे कुछ यादगार सदाबहार गीत। आज शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की याद का दिन है। साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे हिंदी समाचारों के बाद FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। दो दिन के इस सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान सहित कई प्रमुख नेता सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर सत्र से होगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण और समयबद्ध तरीके से कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए मतगणना की व्यवस्थाओं में आंशिक बदलाव किया गया है। जयपुर नगर निगम की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में होगी, जबकि जिले के अन्य 18 निकायों में संबंधित निकाय मुख्यालय पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना होगी। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना के दिन विजय जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। हालांकि प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने घर पर समर्थकों के साथ जश्न मना सकेंगे। आयोग के अनुसार भड़काऊ नारों और माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है, ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला आज से विधिवत पूजा और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही मेले को सिंगल यूज प्लास्टिक तथा डिस्पोजेबल सामग्री से मुक्त रखा जाएगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने मेलार्थियों से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि मेले में स्वच्छ भंडारा लगाने वाली संस्थाओं को नकद राशि से पुरस्कृत भी किया जाएगा। उधर जैसलमेर जिले में आज से रामदेवरा मेले की भी शुरुआत हुई है। श्रद्धालुओं की संभावित तादाद को देखते हुए प्रशासन और रेलवे की ओर से तैयारियां की गई हैं। रेलवे की ओर से लालगढ़ से रामदेवरा के बीच 2 जोड़ी मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां 19 से 22 सितंबर तक 4-4 ट्रिप करेंगी। दोनों रेलगाड़ियों का कोलायत और फलौदी स्टेशनों पर ठहराव होगा। प्रदेश में बीते एक हफ्ते से सुस्त पड़ा मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कहीं तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। मौसम विभाग ने आज 29 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये दौर 15 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
2: दुख सारे सबके ये भोगे, जीवन का संदेश यही है, बढ़ती जाना आगे आगे। इतनी सुंदर कविता भेजने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। राजा एक सीधा सादा हाउस बोट चलाने वाला लड़का और रीता एक अमीर लड़की, दोनों के विचार अलग अलग, सादगी खुलापन रहन सहन का अंतर, अमीर गरीब वर्ग की सामाजिक दूरियां टकराव, कई उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद होती है प्यार की जीत और राजा और रीता हो जाते हैं एक। तो हमें बताइए कि राजा और रीता की भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार कौन थे और इस गीत को कहाँ फिल्माया गया, वो भी बताएं। साथियों, साथ में हमें ये भी बताइए कि नदी में, नाव में, शिकारी में, नदी किनारे में इस वक्त आपको कौन कौन से गीत और फिल्में याद आ रही हैं, वो भी हमें बताएं।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। शशि कपूर, नंदा आगा, शमी, कमल कपूर और इस गीत की शूटिंग कश्मीर के श्रीनगर इलाके की खूबसूरत वादियों और डल झील में की गई थी। आपके कुछ कमेंट्स हम और पढ़ेंगे। आज की इबारत में नदी, तालाब, शिकारी पर गीतों का संगम है जो एक बेहद खूबसूरत भावनात्मक और रूमानी रिश्ता कहलाता है। आजकल शहरों की भागदौड़ और समाज के बंधनों और तनाव से दूर नदी की लहरों में नाव पर सवार होकर एक अलग सुकून का एहसास होता है। जब आप अपने हम सफर के साथ कश्ती पर सवार होकर कुछ पल के लिए प्यार भरी वादियों में अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे गुजारते हैं तो रिश्तों का जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जिस रेडियो में विविध भारती चैनल ना हो उस रेडियो को हमें सुनना नहीं। विविध भारती का साथ है तो मुझे क्या कमी है, दुख में भी मिल रहा सुकून है। जी शुक्रिया। प्रेम रूपी गहरी नदी में जो शोर रूपी लहरों के साथ नैया हिचकोले खाती नजर आती है तब किनारे पर ले आता है साथी का साथ और तूफानों से गुजर कर किनारे लग ही जाता है सच्चा प्यार। हमारे सभी साथी जो प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं वो भी हमें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी किसी ने हमें लिखा है। अगला कमेंट है कि इस दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सुकून सुने जाने में नहीं समझे जाने में छिपा है। जीवन में सुनना एक दवा है, आधी दुनिया का दर्द सिर्फ सुनने से मिट जाता है, अंतर शब्दों में नहीं उसके कहने के ढंग में होता है। मन उस नाविक जैसा है जो सबको किनारे तक पहुंचा देता है लेकिन खुद अपने किनारे की तलाश में रहता है, फिर भी उम्मीद बनी रहती है क्योंकि यही उम्मीद हमें हर दिन आगे बढ़ने की आशा देती है। नदी थी खामोश, किनारा भी अनजान था, नाव में बैठा कोई दिल का अरमान था, माझी ने पतवार थामी तो समझ आया हर सफर को मंजिल से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। साथियों, हिंदी फिल्मों में नाव, बोट या कश्ती में बहुत सारे मशहूर और सुरीले गीत फिल्माए गए हैं तो आज हम ऐसे ही गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो नाव में बैठे कलाकारों पर फिल्माए गए। तो आपको ऐसे कौन से गीत पसंद हैं या फिलहाल आपको याद आ रहे हैं तो लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। और ये भी बताइए कि आपने कश्ती में बैठकर कहां कहां की सैर की, इसके अलावा आपके इलाके, शहर, गांव, कस्बे में कौन सी नदी बहती है, क्या नाम है उनके और आप भारत में बहने वाली कितनी नदियों के नाम जानते हैं। और जब नदी, झील, नाव, कश्ती, शिकारा की बात हो तो बताएं कि कभी हाउस बोट में रहे तो कैसा लगा। और अब बात अमर प्रेम की, एक ऐसे पवित्र और अनकहे रिश्ते की कहानी जो समाज के बंधनों से परे है। दो लोगों के दरमियान एक गहरा और कोमल रिश्ता जो आत्मिक और मानसिक जुड़ाव बन जाता है। तो हमें ये बताएं इस फिल्म का कौन सा संवाद है जो अमर हो गया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के फिल्म में निभाए गए किरदारों के नाम लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के पहले हिस्से में जो बाल कलाकार का किरदार था नंदू, तो बड़ा होने पर नंदू का ये किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए। पुष्पा और आनंद बाबू, मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हैड टीयर्स, और बड़ा होने पर नंदू का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम है विनोद मेहरा। बाल कलाकार थे मास्टर बॉबी, जिनका असली नाम था मासूमा, और साथी कलाकार थे बिंदु मदनपुरी, सुजीत कुमार और फरीदा जलाल। आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हम। जिंदगी के कई रंग हैं, कई सपनों की खूबसूरत दुनिया, कहीं अपने और पराए हैं, कहीं खुशियों की आहट है तो कहीं मन में उठता तूफान। एक माझी सबको नदी पार कराता है पर खुद किनारे की तलाश में रहता है, पर एक दिन समझ आया किनारा बाहर नहीं मन के भीतर है। वक्त के साथ इंसान खुशियों और गमों की धूप छांव से गुजरता हुआ अपनों से मिले अनुभवों के साथ थोड़ा संजीदा हो जाता है। दिन कितने भी कम हो, ख्वाब देखने की और तूफान को किनारा बनाने की चाहत ही इंसान को जिंदा दिल बनाए रखती है। एक साथी ने लिखा है, मैं पिछले सप्ताह ही कश्मीर की वादियों में समय गुजार कर आया हूं। मैंने डल झील में पत्नी के साथ गाना भी गाया, माझी नैया ढूंढे किनारा। गाने हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे हिम्मत हारे व्यक्ति के लिए तुझको चलना होगा। एक साथी ने लिखा है कि जब जब फूल खिले, शशि कपूर नंदा और कश्मीर के डलहौजी में इसे फिल्माया गया था। आवास की दुनिया के दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा और नेकी कर दरिया में डाल। मानो तो गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया मेरा मन तेरी दो आंखों में। हुस्न पहाड़ों का, ऐसे मुहावरे और बहुत सारे गाने गीत जिसमें किसी नदी पहाड़ का नाम आया है तो लिख दे। और एक अभिनेता बैलगाड़ी चलाते हुए नदी सागर की बातें करते हुए नदी ताल तलैया का गीत गा रहे हैं, तो बता दीजिए कि कौन से अभिनेता हैं वो। एक गैम्बलर और उसका तेज तर्रार हमशक्ल सीआईडी पुलिस अधिकारी, दोनों की पहचान को लेकर रोमांचक और भ्रमित करने वाले मोड़ आते हैं। अंत में गैम्बलर और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर खतरनाक अपराधियों की साजिश को नाकाम कर देते हैं। तो बताइए कि द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन की दोनों भूमिकाओं के नाम क्या थे और उनकी दोनों नायिकाओं के नाम भी बताइए। और ये जो गीत अभी आप सुनने वाले हैं, ये किस देश में, किस लोकेशन पर इसे फिल्माया गया था, और इस गीत में जो गायक गा रहे हैं उनका नाम भी जरूर लिख दें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: हमारे साथियों ने जो मैसेज भेजे हैं वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, और सबसे छोटी नदी अलवर के पास अरवरी नदी है, जो करीब 45 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। अनोखी रात ओरे ताल मिले नदी के जल में, सागर में संजीव कुमार। एक साथी ने लिखा है कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की क्रूज में 2 नाइट 3 दिन का सफर किया है मैंने। एक साथी मित्र ने लिखा है, जिसका नाम है जीवन धारा, उसका कोई नहीं किनारा। अगला कमेंट है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, बेटी और दामाद 2019 में केरल गए थे, तब हम बोट हाउस पर ठहरे थे, सुबह से पूरा घूम कर आए, दोपहर का खाना नाश्ता और रात का डिनर भी बोट पर ही ठहर कर किया, दूसरे दिन सुबह बोट से बाहर आए, बहुत अच्छा दिन गया हमारा। देखिए, जैसे जैसा मैसेज आपने लिखा था हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ दिया। साथियों, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये एक बेहद संवेदनशील और लोकप्रिय फिल्म है नैया, जिसकी कहानी गंगा नदी किनारे बने एक छोटे से गांव की है। ये फिल्म मानवीय रिश्तों, निस्वार्थ प्रेम, समाज के बंधन और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसमें कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं, और इस फिल्म नैया के निर्देशक का भी नाम हमें बताएं। तब तक सुनते हैं यही गीत, आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। सोनू और गीता की इस प्रेम और संघर्ष की कहानी का निर्देशन किया था प्रशांत नंदा ने, जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जरीना वहाब के साथ नजर आए थे। और इस गीत में आवाज आपने सुनी येसुदास की, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन, फिल्म का नाम था नैया। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मेरी जन्मभूमि सिंध नदी के किनारे बसा है मेरा गांव। एक साथी ने लिखा है कि मेरी सोच ये है कि जीवन में हम सफर ऐसा होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, जो एक बार अपने साथी का हाथ पकड़ ले तो ता उम्र छोड़े नहीं, अपने हम सफर का साथ मरते दम तक निभाए। यही तो सच्चा प्यार और सच्चा साथ है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे घर में कोई आ गया था तो आधा प्रोग्राम तो निकल गया। अगला कमेंट है कि मेरे शहर में गंगा है, थोड़ी दूर पर पुनपुन भी मिलती है और सोन भी मिलता है। गंगा नदी का प्रारंभ गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए दूरी तय करती हुई समुद्र में गिरती है। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें आवाज है मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है कटी पतंग। तो इस फिल्म के कलाकारों के नाम और साथ ही निर्देशक का नाम भी हमें लिखकर भेज दें।

त्रिवेणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुत तेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है, तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ ला दी है। अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना या एकांत में होना। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने भी पड़ते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा और रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिंदगी के सफर में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफर में कोई साथ दे दे तो अच्छा, और ना दे तब भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ही प्रस्तुत होना पड़ता है।

ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले जैसे

0: अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणास्पद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हो या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इसे हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें।

आज से 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हजारों लाखों फ्रेंड्स के बीच भी कोई अकेला हो सकता है, पर सोशल मीडिया के साथ हम इसे बखूबी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर होना और बात है, जबकि वास्तविक जीवन में कोई सचमुच अपना होना दूसरी बात। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट की धूम के चलते दुनिया भर में पल भर में संबंध बनाना आसान लग सकता है। हम अपने दोस्तों को संदेश, ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पर इन सब में कोई ऐसा अपना ढूंढना जो आपको आपकी

अकेलेपन से निकाल सके काफी मुश्किल होता है। इतनी सारी सोशल साइट्स के बावजूद अकेलापन अभी भी एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति अपने साथी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स नहीं, अपने सचमुच के दोस्तों और अपनों से अपने विचार मिलकर बांटें, हंसें और हंसाएं। परिजनों, माता पिता, पार्टनर, बच्चों, भाई बहन और दोस्तों से हमेशा जुड़े रहें, उनके काम आते रहें, उनकी समस्या का समाधान जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आप मदद लेते हैं तो दूसरों के मददगार भी बने। ये बेहद जरूरी है आज के इस समय में, जब हजारों की भीड़ होते हुए भी हम कहीं न कहीं अकेलापन, तन्हाइयां महसूस करते हैं।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक

0: संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
0: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझोउ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
3: इंडियाज इनोवेशन,
4: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व
1: तक आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम ₹3,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट

0: पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल एजीटीएफ और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा ओएफटीईसी ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर।

आइए अब सुना जाए अगला गीत जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है रंगोली।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है सन्यासी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है संगम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है शैलेंद्र, धुन है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों, आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाजों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: देश की सुरीली धड़कन, पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, कर्नाटक स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत, बडेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा, राजस्थान जोधपुर से अशोक बाणिया, प्रेमलता और सुमित बाणिया, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

साथियों, मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, आकाश जाधव और पवन राजे जाधव, गांव हिप्पर सोगा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख, लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार, कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग शीतल, लोकेंद्र और रामबाबू मालवीय, ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषी, चिऊ माऊ और बिट्टू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आरएसपुरी, बीकेपुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता कृष्णा, सावित्री राज, प्रथम राज, अंजलि पलक, अमीशा अनुष्का, आशीष लक्षिता, जतिन मनोहर लाल सोनगरा, सरोज दायमा, अखिल दायमा, एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा। बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निशा, निहारिका, सोनू और मोनू रावल। नजीरगंज नेपाली पाड़ा जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक लींबू, रितेश लींबू, उषा, ज्योति, किरण, दिरशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार। भुट्टो मंडी जिला फतेहाबाद हरियाणा से अमर वर्मा। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शबनम बानो। आप सभी की पसंद पर सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गोविंद मुनीस का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा शानू और निमो। कोटदा बहादुर जिला मंदसौर एमपी से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
3: नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव। इसका निर्देशन किया निर्मल।
1: समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
3: शंकित किया जा रहा है, अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन का होती है?
4: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबी लाल जी, आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
5: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
6: नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
7: अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा, हैं? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
5: हाँ, ठीक है, ठीक है, अब तुम्हें कौन रोके भाई।
8: हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुंचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए।
4: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
5: आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं?
8: मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूं आप ही की तरह, ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है।
6: नक्काल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
5: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहां से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
9: नमस्कार जी।
5: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
9: बड़े साहब जी हैं
5: है? ये कैसा सवाल है,
8: मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
9: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
8: अरे
9: वो कब आएंगे?
8: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
4: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था?
9: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
4: जी,
9: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
4: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
9: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
6: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
9: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
10: अच्छा,
9: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
3: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बाग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
9: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
11: इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
9: सर, आप बुरा न माने तो एक बात को।
10: हाँ हाँ, बोलो बोलो।
9: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
3: अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
11: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
3: दफ्तर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
11: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
4: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
11: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ, क्या नाम है आपका?
9: जी सत्यमूर्ति।
3: सत्यमूर्ति जी यहाँ आइए, एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना
9: जी?
3: आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
9: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना, मैं आपका एहसान मानूंगा।
3: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा
9: जी?
3: अरे आपको क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता।
9: जी जी जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ, इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
3: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई। चौकन्ना, टेलीफोन उठाना।
11: ओ कहाँ मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
4: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
11: हिसाबी लाल जी।
3: सर आप सीनियर हैं।
11: ओहो ठीक है ठीक है, मैं ही उठाता।
3: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
11: लगता है। साहब जी आ गए, आज बहुत जल्दी आ गए।
3: लगता है साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
9: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
11: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
12: भाई शाम आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
3: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं।
11: है?
3: पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
7: नकाल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
11: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
13: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है, स्टुपिड। मेरा मुंह क्या ताकते हो, जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
12: अब जी सर।
9: सर अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
11: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा
9: जी।
11: हाँ कल आना कल।
12: सजन कब आएगा, सजन कब आएगा।
11: चौकन्ना।
7: जी सर।
11: सुनो ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
7: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
11: क्या,
7: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया, अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
11: हिसाबी लाल जी,
3: जी
11: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
3: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए
6: आज साहब जी का मूड कैसा है?
12: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो यह है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
6: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
5: कर लो।
6: आशा जी आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में है, आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
4: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ।
6: ये भी ठीक है।
9: नमस्कार सर, कहिए क्या काम है?
5: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
9: हाँ ठीक है ठीक है।
6: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं?
9: जी हाँ।
7: नमस्कार बाबू।
9: हाँ
7: आपको साहब बुला रहे हैं।
9: ठीक है आता हूँ, आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
10: नमस्कार सर।
7: नमस्कार। नकाल बाबू
10: जी,
7: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
10: कहिए सर।
7: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है
10: जी,
7: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है,
10: ओ।
7: और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
10: ओ, तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
7: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
10: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा।
7: वही तो मेरी समस्या है, अब जाऊं तो कैसे जाऊं।
10: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी दीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
7: नकाल बाबू
10: जी,
7: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं।
10: जी
7: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते।
10: जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
7: हाँ ठीक है, सारे डेट्स ठीक तरह से नोट कर।
10: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ।
12: उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
6: अरे ये क्या रट रहे हो नकाल बाबू।
10: साहब जी का टूर प्रोग्राम, 11 12 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
6: अरे वाह।
9: सर वो मेरा प्रमाण पत्र।
14: भाई बुजुर्गवार आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए, हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
9: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
14: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
6: सत्यमूर्ति जी आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं।
14: बिल्कुल,
6: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
9: तो फिर मैं कब आऊं?
14: कल आना, कल
9: कल कल तो इतवार है।
14: ओहो तो सोमवार को आइए, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
7: नकाल बाबू
10: जी। सर
7: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
10: जी हाँ सर देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
7: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
10: पर सर लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था, मैंने सोचा सर ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
7: खैर उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, The whole program should be closely monitored.
10: जी हाँ, whole program close ही होना चाहिए।
7: ये कैसी बातें करते हैं नकाल बाबू?
10: जी
7: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
10: जी,
7: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं, पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा
10: जी,
7: और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
14: साहब जी ये असल में सर्कुलर नहीं सर्किलर है।
7: खैर अब जो भी समझो। हाँ पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए, उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
10: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा, 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 कॉफी मंगा लूंगा।
7: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
10: सर आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगे।
7: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना।
10: जी हाँ साहब हो जाएगा,
8: आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
13: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
8: ओके साहब। सर मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
13: अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम?
8: जी
13: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
8: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूँ।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा
1: और क्या।
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट। क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से।
2: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट्स दो।
2: ये लीजिए। चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, एक रुपए में एक पैकेट। चना लीजिए चना।
0: उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते थे कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके। ओ चने वाले दादाजी
2: जी,
0: आइए जरा।
2: और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना?
1: दादाजी, आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना?
2: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
0: क्या, आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
2: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
1: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
0: अच्छा, याद आया।
2: नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सत्यमूर्ति चने वाला हूँ। पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। चला भाई चला, गरमा गरम चला।
0: अब ये चना खाने से हमें प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी। इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध द्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
1: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
0: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
1: मैं आशावादी हूँ।
0: हाँ, तुम हो ही आशा।
1: कम से कम तुम जैसी सिनिक कवि तो नहीं हूँ।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
3: पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी
4: हिसाब। बिलाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
3: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
4: मिर्चे भी कुछ
3: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
5: नक्काल बाबू,
4: क्या
5: कोई एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
3: जाओ उसे।

0: तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
1: एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
2: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
0: ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए। बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
1: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
0: जी,
1: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
0: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
1: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
0: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
1: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
2: साहब जी, हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर?
0: हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है, मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा। बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
1: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हा?

0: हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली हैं। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहाँ मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित हों।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुला कर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबीलाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं। यही नहीं, वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और
4: गर्मागरम चना, बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए था, चना खाइए चना।
5: अजी महाशय,
4: बड़ा मजेदार चना है।
5: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ, अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही हैं। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: भाई चना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना, मसा देगा चना, चना खाइए साहब चना।
5: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा।
6: आपको वहां ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
7: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
5: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
7: ओ समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
5: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
7: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र?
5: सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
8: सर, मेरी अर्जी
6: आज नहीं होगा, कल आना कल।
8: साहब जी मेरा प्रमाण पत्र। आप जाओ भी, कह दिया ना कल आना कल।
5: अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
7: क्या कहाँ चलूं, अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है। आपका काम नहीं होगा
5: क्या?
7: कल आना कल।
5: अरे सत्य

0: कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, विविध भारती का सफ़र जारी रहेगा। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। इस समय शाम के ठीक 4 बजे हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पणिहारी।

किस्मत री लकीरा ने ताकती मत बैठ, किस्मत री लकीरा ने ताकती मत बैठ, अपना कर्मा सु तकदीर बदल जावे है। रास्तो मुश्किल होवे तो हिम्मत मत हार, मेहनत करती जा, बस मेहनत करती जा, मंजिल ने करीब लाती जाओ। कार्यक्रम सुनन वाली मारी सगली प्यारी बहना ने धीरज लाल ने चारो हेत भरो राम राम। और जी बहना किया हो, बढ़िया हो ना। देखो बहना, अब बार देखो बरसात जकी है आ एक साइड तो हुई गी और एक साइड हुई कोनी, और मतलब मौसम इतो सुहावनो भी हो जावे बरसात होवन सु, है कि नहीं, और मन भी और ज्यादा प्रसन्न हो जावे, है ना। मतलब कि मौसम को इंसान के मन माते कितो ज़्यादा फर्क पड़े है, और मन जद चोखो हुए तो वो इंसान हर एक काम भी बिकमाई ने आ चीज झलके भी है, है ना। मन प्रसन्न हुए तो भी वो मन हर एक काम में करे भी है। और देखो बहना, और जो भी वो काम करे है, अगर वो काम मेहनत सु भी करे, ईमानदारी सु भी करे, तो वो काम जो भी को परिणाम है वो भी बिने बितो ही दुगुनो मिले है। बहना मेहनत की जकी रोटी है भले ही सूखी होवे, पण बीरो जको स्वाद है ना, दुनिया री मिठाई सु भी ज्यादा मीठो होवे। बहना कई बार दिमाग में आ चीज आ जावे कि मैं ओ जको काम

काम है बाद में कर लेऊं, और भी काम में मन नहीं लागे है, लेकिन आ चीज थाने ध्यान रखनी है कि काम देखो बेना हमेशा मन लगार करनो चाहिए। काम के पीछे की जगह भावना हुए सही हुई तो काम बहुत बढ़िया होवेला। बेना जीवन में आज मेरी पहचान भी के कपड़ा सू, धन दौलत सू या बाता सू नहीं हुए, मेरी पहचान हुए भी के कर्मा सू। और कर्म भी देखो बेना यान कोनी है कि जको ऑफिस जा रही हो है या केवल खेत में ही काम कर रही हो वो ही काम है, जका सुबह रोजगार मिल रही हो वो ही काम है, काम वो नहीं है। काम मतलब कि माँ जकी है आपके बालका ने संस्कार देवे तो वो भी तो कर्म है। किसान आपकी धरती के मायने बीज बोवे फसल उगावे भी को ध्यान रखे वो भी को कर्म है। और गृहिणी आपा परिवार ने जोड़ रखा तो वो आपनो कर्म है। और मजदूर जको है कड़ी मेहनत कर पसीनो बाहर मजदूरी करे ईमानदारी सू आपको धर्म निभावे तो ओ भी को कर्म है। तो बहना सगड़ू मोटी बात तो आ है कि आपानी जकी जिम्मेदारी है इन अगर आपा ईमानदारी सू निभावा तो ओ ही साचो कर्म है। और लेकिन कई बार इंसान के मन में अभी आवे कि काम तो मारो तो काम की कोनी है, वो तो काम एकदम छोटो सो है, वो मैं किया करूँगा, और भी ने काम करता ने भी शर्म भी आ जावे। लेकिन बहना कोई काम छोटो नहीं हुआ करे, काम का रूप और काम की भावना आ सगड़ों अगर बड़ी है तो कोई काम छोटो नहीं। छोटी सी सुई भी देखो बहना कपड़ा जोड़ देवे, छोटो सो दीपक अंधारू दूर कर देवे, और छोटो सो नेक काम कोई री पूरी जिंदगी ही बदल देवे। देखो बहना अट मने एक छोटी सी कहानी याद आ रही है एक किसान री। मतलब दो किसान होता और बैंक ने बराबर जमी है, और एक किसान तो पूरी मन लगार आपके खेत के मायने कड़ी मेहनत कर रियो है, काम कर रियो है, फसला ने पानी पिला रियो है, बैंको ध्यान रख रियो है, टेम माते भी मैं निनाण करने जा रही है, है ना। और दूजो जो को किसान है वो बटे जावे थोड़ी देर काम करे थक जावे पछे वो सोचे कि आज तो कर लियो, अब आज को तो एकर को घणो ही है काले कर लिए छू। और देखता देखता देखो बेना फसल पकड़ को समय आ जावे, और पछे देखा एक जको वो किसान आपकी मेहनत सु ईमानदारी सु पूरो मन लगार काम करतो बिके खेत के मायने फसल जकी है बात ज्यादा हुए और दूजा किसान के फसल हुए कम। तो देखो बेना अटे भगवान तो दोनों ने जमीन बराबर दी ही, फर्क केवल काई हो, फर्क हो सिर्फ कर्मारो। तो बहना आपा भी आ चीज अपने जिंदगी माते लागू कर देवा। तो भगवान देखो बिना रास्ता दिखा सके पर भी रास्ता माते चालनो आपनो कर्म है। इंसान रा कर्म बिना व्यवहार बिना अमर कर देवे। बिना अगर आपा भगवान री पूजा के मायने घंटों बैठा पर घर आयोड़ा मेहमान के साथ है व्यवहार चोखो नहीं रखा, कोई गरीब ने आपा अपमानित करा तो आ पूजा तो बिना अधूरी है ना, है ना। तो ई वास्ते बहना याद रख जो अच्छा कर्म करनो भी एक पूजा है। कर्म की भावना चोखी रखा, कोई स्वार्थ भाव सो कोई सो व्यवहार रखा तो अब बात बिल्कुल भी चोखी को नहीं बहना। बहना चोखा कर्म रो फल चोखो ही होवेला। तो एक चीज याद रखी जो कि आपने ध्यान रखनो है बस हो हाथा में मेहनत मन में विश्वास और कर्मा में सच्चाई। तो बहना बाता यही चलती रहेला और कार्यक्रम और आगे बढ़ावाला, लेकिन अबार सुनावा थाने ओ प्यारो सुगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: देखो मैं ना कदी थे गौर करियो कि एक

नन्ही सी जी की बूंद है वह जब धरती माते पड़े तो सूखी धरती के मायने किया हरियाली की आस जगे है। बाही बूंद खेत में फसल बने, पेड़ पौधा ने जिंदगी देवे और ई पानी सूही घर में भोजन बन अपानी थाली तक पुगे है। बहना पानी की कीमत भी ने पूछो जको तपती धूप के मायने माथा माते दो गढ़ मेल कोसा सू पानी लावे है। और गांव री कितनी ही बहना आज भी देखो पानी वास्ते कितनी दूर तक जावे है। तो बहना आपने भी एक कीमत ने पहचाननी है और पानी ने बचानो है, क्योंकि देखो एक एक घड़ो भरण के में भी समय भी लागे और मेहनत भी। बहना आपने घरा के मायने कदे ही देखो टंकी भरता समय पानी जकी टंकी भरी जावे लेकिन पानी ढुलतो रहे। कई बार सब्जी धो रिया हाँ और दोबारा भी ने आप धोवा करा तो भी पानी ढुलतो रहे। तो आप जरूरत से ज़्यादा अगर पानी बहाए देवा तो सोचो इतो पानी बह गयो और यूँ आप वो भी सोच लेवा कि कहीं फर्क पड़ेला। पानी तो आपानी तो टंकी जकी है होद है वो भरियोड़ो है, लेकिन वो नहीं सोचो बहना कि यूँ कितना ही घर के मायने पानी नहीं आ रियो है और बे पानी वास्ते कितना तरस रिया है। तो फर्क तो ये चीज़ को घड़ो ही पड़े है। बहना आज हर एक घर में अगर थोड़ो थोड़ो पानी बचेला तो इसो पूरो गांव बचसी। और वो पानी बचानो केवल देखो आप सोचा है कि सरकार की जिम्मेदारी पंचायती आ कोनी है। बहना कोई एक संस्था की जिम्मेदारी कोनी है, पानी बचानो मतलब कि हर एक घर की जिम्मेदारी है। और ई जिम्मेदारी ने आपने निभावन के मायने आपानी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहना बस आपा थोड़ी सी समझदारी सू और अगर आपा रोजमर्रा की जकी आदता है बहने भी अगर आपा सुधारा और पानी बचावा तो बहना आपा रोज पानी बचा सका हाँ। और एक पानी बचानो मतलब कि जीवन बचा सका हाँ। जीवन आपाणो, जीवन पेड़ पौधारो, जीवन जेका ए पक्षी है पशु है एंको भी। बहना कई बार आपा नल खुल्लो छोड़ काम में लाग जावा और ध्यान नहीं देवा हाँ। कई बार देखो बर्तन मांजता टेम कपड़ा धोता टेम तो घर के मायने आपा वो ध्यान रखा कि आपा एक तो फालतू को पानी नहीं ढोला और बच्चा के मायने भी आदत में वो सुधार करा कि बेबी पानी की कीमत पहचाने। और घर में कदी अगर कोई जो नल टपक रियो है तो बिने भी आपा तुरंत ठीक करावा। इके अलावा देखो बिना पानी तो अपन ने बचानो ही है, बी के अलावा बिजली को भी अपन ने पूरो ध्यान रखना है, क्योंकि बिजली को जो को निर्माण है वो पानी से ही हुआ करे है। तो अगर आप बिजली बचावा तो सीधो सीधो आप पानी भी बचा रिया हाँ। तो बहना ये चीज़ा आपने ध्यान रखनी है। और अब वक्त हो रही हो कि थाने एक और प्यारो सो गीत सुनाई दियो जावे, तो सुना बहना वो गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: बहन स्वस्थ जीवन जीवन वास्ते जरूरी है कि अपनी जिकी दिनचर्या है आ भी स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ आदता जिकी है ये अपनावा। और स्वस्थ आदता की शुरुआत आप करा बहना सुबह उठते ही, अगर आप मतलब कि जो अपने दिनचर्या के मायने अगर योग और प्राणायाम ने भी शामिल करा तो वाकई में बहना आप कई रोगों से खुद ने बचा सका और परिवार ने भी अपा जेका है रोग मुक्त कर सका। हाँ बहना, दिनचर्या के मायने योग और प्राणायाम को स्थान होना बहुत जरूरी है। देखो बहना, जिया कि मौसम के अनुसार आप खान पान भी करा, आप ओढ़ा पेरा भी हाँ पहनाओ भी आप बहन को ही रखा, और तो बहना शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वास्ते योग और प्राणायाम ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आप सोचो कि माना तो टेम ही कौन मिले, कणा करा, उठता ही इतो ज़्यादा काम करा, योग तो शायद ही वास्ते हो तोला जकां सो आप पतला हो जावा। नहीं बहना, योग ने आप वो मत सोचो कि आप केवल पतला होने वास्ते आप इस चीज़ ने करा, योग का तो घना ही फायदा है। देखो बहना, योग करण सु आपको जो को शरीर है वो हमेशा लचीलो बनियोडो रहेला और साथे साथे मजबूत भी बनेला, है ना। मजबूत इं भी बनेला, देखो बहना कि अपने जकी रोगा सु लड़न की जकी ताकत है ना, आ ताकत और भी ज़्यादा मजबूत होवेला। जन आ रोगा सु लड़न की ताकत मजबूत होवेला तो कोई रोग आप करने फटकेला भी कोनी। जिया कि मौसम के अनुसार अगर सर्दी जुकाम भी हुई गयो है तो सर्दी जुकाम भी आपने आसानी से हुवेला नहीं, अपन कोई गोली लेवन को ही काम नहीं पड़ेला। और मानसिक स्वास्थ्य मन शांत रहेला, आप जकी तनाव मतलब आप दिनचर्या में देखा या अपने काम की वजह से आपने कई बार तनाव हो जावे है ना, और इसके वजह से आपने नींद भी नहीं आवे है, तो आ समस्या जकी है अपने योग सु प्राणायाम सु दूर हुए ला बहना। क्योंकि मानसिक शांति अपने योग के माध्यम से मिलेला, आप ध्यान योग कराला तो अपना मन भी जो को है वो केंद्रित रहेला। और इसके अलावा देखो बहना, और भी घना ही फायदा है कि अपने जगह अगर मान लो कि जोड़ा का दर्द है या हाथ पग घना दुखे है तो इसके मायने भी घणो आराम मिले करे, मोटापा ने भी वो दूर रखे है, तो वो रक्त संचरण ने भी देखो बहना सही रखे। तो रक्त प्रवाह ने ठीक रखने की वजह से देखो अपनो जो को शुगर है मधुमेह है वो इको स्तर भी घटिया करे है, और इको स्तर घटी और जो को कहवा है कि बेड कोलेस्ट्रॉल हुआ है जका के वजह से लोगों ने हार्ट की बीमारी हो जावे है ना, दिल को दौरों पड़ जावे है, तो इस समस्या से भी बिना निजात मिले है। सही रक्त संचार से शरीर के मायने जो को ऑक्सीजन है जका से आपने सांस के मायने ग्रहण करा तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वारो संवहन अच्छो हुए है और मांसपेशियां और हड्डियां भी मजबूत हुए, तो बहना कितना ज्यादा फायदा है, तो आप इनको लाभ क्यों नहीं उठावा। तो बहना दिनचर्या के मायने योग और प्राणायाम में शामिल करो और आपको जीवन ने और भी ज्यादा स्वस्थ और बेहतर बनाओ। तो बहना अब लेर चला था ने एक और गीतारी दुनिया में सुनावा वो सुंदर सो प्यारो सो गीत।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम पणिहारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 4:30 हुआ जाते हैं। निजब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: जब आप ये सारे गाने एक के बाद एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है
1: जी।
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज़ अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीज़ों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट हैं हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
0: बहुत बड़ी।
1: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके यू नो
0: संशय था,
1: हाँ, कि ये जो बात हो रही है। और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं?
0: बिल्कुल।
1: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है। ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं ये। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है। और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है, कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
0: वाह वाह।
1: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
0: बिल्कुल,
1: और इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
0: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
1: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
0: कंप्लीट एल्बम,
1: कंप्लीट एल्बम है।
0: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
1: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना।
0: अच्छा।
1: जिसने गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका।
0: बिल्कुल।
1: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट।
0: उसको ये मौका दिया गया।
1: देखिए कितना कमाल है रहमान सर।
0: पर हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।
1: किसी में से यारा लाए मजकारा।

0: आईवस करा अखियां लगाई रखना किस्म सियारा लाईवस करा लकियां निभाई रखना।
1: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थीं तब रहमान नहीं थे सामने।
0: नहीं थे जी।
1: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
0: जी,
1: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
0: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
1: क्या बात,
0: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल,
0: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला
1: सोची
0: ना, सपने
1: थी।
0: में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली, गुड वर्क।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं, और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है,
1: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
0: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद,
1: वाह वाह,
0: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम एआर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
1: ओ हो हो हो हो।
0: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
1: क्या बात है, क्या गाया?
0: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है,

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक लगा। ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मैं भी इसलिए शायद, वेरी गुड एक्चुअली, गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है। और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के, असली रूह इनमें है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था, और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास। उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है, क्या बात है।
1: वो लोग अटकते हैं इसमें,
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
0: क्या बात है,
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्य की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
1: ऐश्वर्य से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्य ने एक रियलिटी शो जीता था। वो बिहार से पहले थे, और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे।
0: अच्छा?
1: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली हैं। बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
0: मतलब बरसों बाद
1: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद, जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे, मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी, यू नो, यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम होगी डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: रफी भक्त हैं।
0: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त, एक किशोर भक्त।
1: हाँ, ये
0: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
1: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, घर ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात ये है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
1: बहुत,
0: है ना, अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
1: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहाँ एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
0: वाह वाह वाह,
1: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
0: वाह,
1: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है। क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था, मेरे घर

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था।
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी,
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई, और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो, लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज़ सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा,

0: तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं, चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हों। वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर,
1: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया,
0: अमेजिंग।
1: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युगवाणी।

0: जिंदगी में मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की मुश्किल से घबराते नहीं, बल्कि हर चुनौती को एक नया मौका समझते हैं। नमस्कार युवा साथियों, तैयार हो जाइए अपनी सोच और नई उड़ान सोच को नई उड़ान देने के लिए, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, जहां बात होगी युवाओं के सपनों की, करियर की, समाज की और उन तमाम मुद्दों की जो हमारी युवा जिंदगी से जुड़े हैं। मैं हूं आरजे नेहा नारायण सोनी और आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी मुलाकात जिसमें होगी नई बातें, नई सोच और सुंदर गीतों का खूबसूरत संगम। तो जुड़े रहिए युवाणी के साथ, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी सोच और आपके सपने यही हैं हमारे देश की असली ताकत। बिल्कुल, इस विषय की शुरुआत लोक कला और युवाओं की भागीदारी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, फिर हस्तशिल्प की ओर ले जाना बेहतर रहेगा। हमारी मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास, रंग बिरंगे हस्तशिल्प और सदियों पुरानी कला, यही तो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ कलाकारों की ही नहीं बल्कि युवाओं की भी है। आज बात उस कला की जो हमारी जड़ों से जुड़ी है और जिसे युवा नई सोच और नई तकनीक के साथ नई पहचान दे सकते हैं। राजस्थान की कठपुतली, ब्लॉक प्रिंटिंग, मिट्टी के बर्तन, बंधेज, लकड़ी और धातु का काम हमारे हस्तशिल्प सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि हमारी परंपरा की जीवित कहानी है। आज के युवा इन कलाओं को सीखकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से इन्हें देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इससे संस्कृति का संरक्षण भी होगा और स्थानीय कारीगरों को तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है शनिवार और आज का हमारा स्पेशल कार्यक्रम फोन करें गीत सुने भी है, तो आज सुनाएंगे आपको अपनी पसंद के पसंदीदा गीत। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जानते हैं ये जानकारी।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट अब 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सुनो सुनो सुनो गाँव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें। तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आज सबसे पहली फरमाइश की है निर्मल कुमार ने बालवा रोड न्यू हाउसिंग बोर्ड से, तो आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों अगली फरमाइश की है मुकेश शर्मा ने अमर सिंह कॉलोनी से, तो आइए सुनते हैं एक फूल दो माली का ये गीत।
1: ये पर्दा हटा दो,

0: बताते बारात लेके आते हम प्यार करने वाले।
1: दोस्तों अगली फरमाइश की है नियाज पेंटर ने लोहारपुरा से, तो आइए सुनते हैं आंखें फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, समय की कमी के कारण आप सभी के गीत हम आज कार्यक्रम में नहीं शामिल कर पाए, लेकिन मैं आप सभी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। तो चांद मोहम्मद अजमेरी गेट से और पप्पू हलवाई राजेश जी कुमावत तेलीवाड़ा से। तो इन्हीं गानों के साथ मैं नेहा नारायण सोनी, आपकी होस्ट और दोस्त, देती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, सबको सम्मान दीजिए। नमस्कार।

अब युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम जी वाट उड़ीकता सगला किसान साथिया ने अभिलाषा पारिक की उर्सू ने भरी राम राम सा, और अनीता बहन आपने भी मारी उर्सू घनी घनी राम राम सा।
7: अभिलाषा जी आपने भी घना घना राम राम, और किसान वाणी सुनवा वाला सभी श्रोतावान ने अनीता की घनी घनी राम राम सा।
6: जी तो देखो अनीता बहन, आप देख रहे की जो बिरखा को मौसम छे वो कितनो बढ़िया लागे छे देखवा में।
7: जी
6: चारों मेर हरियाली हो जाओ छे, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आउ छे, और मतलब अहिया लागे छे कि कोई भी समय देख लो आप मन प्रफुल्लित रहे छे, और अपना जो मन है वो काम में निकतरी लागे छे। पर देखो यहाँ की यो बारिश को मौसम आपने लिए फायदेमंद छे, आपने अपने बढ़िया लागे छे, ये तरीका से अपनी खेती बाड़ी के ताई भी यो बारिश को पानी बहुत बढ़िया छे। पर कई स्थितियां में अहिया देखियो जाओ छे कि जो बारिश को पानी होवे छे या फिर ज्यादा बारिश हो जाओ छे वो

0: खेत की माटी के तानी फायदेमंद की जगह नुकसानदायक भी साबित हो जाओ छे।
1: जी
0: जैसा कि आपने देखा कि बारिश खेती के तानी जितनी जरूरी छे कई बार उतनी ही बड़ी चुनौती भी बन जाओ छे। लगातार तेज बारिश और खेतों में लंबा समय तक पानी भर जावे से मिट्टी में जितना भी मौजूद पोषक तत्व छे वहां को संतुलन बिगड़ जाओ छे।
1: बिल्कुल,
0: या में सबसे ज्यादा असर आपने नाइट्रोजन पर पड़े छे जो फसला की बढ़वार के तानी सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व में से एक छे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आप भाई। देखो यार, चौकी फसल के लिए केवल पानी, खाद और बीज ही जरूरी कौन रहे, पौधा के लिए कई ऐसा पोषक तत्व की भी जरूरत रहे जिनकी मात्रा बहुत कम रहे छे, पण आप याने सूक्ष्म पोषक तत्व खेमा चाहे जो की बहुत ही ज्यादा जरूरी रहे छे, या के बिना जो फसल की बढ़वार छे वा हो कौन पावे।
0: जी आपने देखा छे ना नीता बहन की कई बार अपना जो किसान साथी है बारिश के पाछे यदा अपनी फसल को निरीक्षण करे छे और वहाँ फसल की पत्तियां ने पीली देखकर तुरंत यूरिया डाल देव छे, पर अपना जो कृषि विशेषज्ञ है वाको कह बो यो छे कि हर बार पीलोपन नाइट्रोजन की कमी की वजह से खून होवे।
1: जी
0: पहले आपने असली कारण और वजह जाननी चाहिए, उनके पाछे ही आपने कोई फैसलो लेनो चाहिए।
1: और देखो साहब, बहुत सारा जो अशा पोषक तत्व छे जमें जिंक छे, आयरन छे, सल्फर छे, बोरोन छे, या सबकी पोषक तत्व की मात्रा भी फसल में बराबर मात्रा में रहनी चाहिए। अगर एक की भी कमी है जावे छे तो उसे ही फसल पर उनकी गुणवत्ता पर असर पड़े छे। जिये कि जिंक की कमी रहे तो पौधा की बढ़वार रुक जावे छे, आयरन की कमी रहे तो पत्तियां पीली पड़ जावे छे, सल्फर की कमी रहे तो दोनों पत्तियां में पीलोपन आ जावे छे, पौधा की बढ़वार कमजोर हो जाव छे। यही बोरोन की कमी से फूल और फल बनवा की जो क्रिया छे वह भी प्रभावित होवे छे और नई बढ़वार जो होवे छे वह भी कमजोर हो जावे छे। फलियां जड़ा को आकार असामान्य हो जावे छे। यही मैगजीन की कमी से पत्तियां नसा की बीच में पीलोपन या छोटा छोटा धब्बा दिखाई देव लग जावे छे। पर देखो सा, हर कमी की पहचान कर वो बहुत जरूरी छे। खेत का अलग अलग हिस्सा को निरीक्षण अपने किसान भाई ने समय समय पर करती रहनी चाहिए। नई पत्तियां हो या पुरानी पत्तियां, पौधा की बढ़वार, जड़, तना, पत्तियां को हमेशा ही निरीक्षण करते रहनी चाहिए जिससे कि वहाँ की जो असली कमी छे वह पहचान में आ सके।
0: जी और देखो, बारिश के पाछे भी अपना किसान साथी कुछ अच्छा काम छे जो कर लेवे तो अपनी फसल ने नुकसान से बचा सके छे। जैसा कि सबसे पहले देखे कि जो बारिश रुकता ही बिना जांच के यूरियो डालबो सही तरीको कौन है।
1: जी
0: सबसे पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जी, जैसे कि वाने देखनो चाहिए कि खेत में पानी कितना समय तक भरेड़ो रहो छे। मिट्टी सूखबा के पहुंचे पौधा की नई बढ़वार पर नजर रखनी चाहिए जी। अगर पौधा सामान्य होबा लगे तो अतिरिक्त खाद देबा की जल्दबाजी न करनी चाहिए जी। यदि लंबा समय तक जल भराव रहो हो और नाइट्रोजन की कमी का स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहा हो, जद ही आपने कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सीमित मात्रा में नाइट्रोजन देनो चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेत में जल निकास की व्यवस्था बेहतर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में पानी अधिक समय तक न भरियो रहे।
1: बिल्कुल सा, देखो सा किसान भाई, बारिश के पाछे खेत की स्थिति न भी समझनो चाहिए, जल निकासी करबो, फसल को निरीक्षण करबो और जरूरत के हिसाब से ही पोषण देवो जरूरी छे, जद ही अपना फसल और फसल की गुणवत्ता चोखी बनी रेवली।
0: जी साहब, तो देखो बढ़िया सी बात और बढ़िया सी जानकारी तो अपना किसान साथिया के तानी होगी, पर जब कार्यक्रम में सिलसिलो चल रहे है जानकारी को
1: जी,
0: तो साहब देखो अपना विशेषज्ञ भी अपने साथ है और एक नई जानकारी के साथ अपना किसान साथिया से मिलेला, तो काई जानकारी दे रहे हैं सर।
1: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों को अनीता का बहुत बहुत राम राम सा। श्रोताओं, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं इस पखवाड़े के मुख्य कृषि कार्य के बारे में। इस पर जानकारी देंगे पवन कुमार बरड़िया जी, आप सहायक निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर में आप पदस्थापित हैं। पवन कुमार जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, राम राम सा।
2: राम राम।
1: पवन जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस पखवाड़े में कौन कौन सी फसलों का बुआई का उपयुक्त समय है और उनकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इसके बारे में किसान भाइयों को बताइए।
2: किसान भाइयों, इस समय जो अपने 15 सितंबर से पखवाड़ा जो प्रारंभ हो रहा है उसमें अपन जो है कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं उनकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं
1: जी,
2: और उनकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बताना चाहूंगा आपको तारामीरा की जो फसल है
1: जी,
2: उसका 15 सितंबर से जो है बुआई का उपयुक्त समय प्रारंभ हो जाता है। और तारामीरा की अगर अपन बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों, जो अभी वर्तमान में जो उन्नत किस्में हैं वो आरटीएम 1624, आरटीएम 1351, आरटीएम 314, और इसके अलावा दो उसकी उपयुक्त किस्में और हैं जो कि अधिक उत्पादन देती है, उनका है आरटीएम 2002 एवं आरटीएम 1355। यदि इन किस्मों को अपन बोते हैं तो किसान भाइयों अपन अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो तारामीरा है वो बुआई के लिए अपने बीज की जो दर है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखें, और बीज को बुआई से पूर्व जो है आप मैनकोजेब जो नामक दवाई आती है वो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बोए, जिससे कि अपने आने वाली जो फसल है उसमें कीट और रोगों से जो है अपने को थोड़ी राहत मिल सकेगी, मुक्ति मिल सकेगी। और इसके साथ साथ में किसान भाइयों अपन जो इसकी बुआई करें तो अगर वो लाइन से लाइन बुआई करें तो बहुत ही अच्छी रहती है, उसमें उत्पादन अच्छा होता है, अपने कृषि क्रियाएं अधिक होती है, अच्छी हो पाती है। उसके लिए आप लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखें
1: जी।
2: दूसरी अपनी जो मुख्य फसल है इस समय वो तोरिया की फसल है, जिसकी बुआई भी अपन जो है 15 सितंबर से प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है अपने उन्नत किस्में यदि अपन बात करें तो TL15, भवानी और संगम, ये जो है तोरिया की उन्नत किस्में हैं। इसमें भी जो है आप बीजोपचार करके ही उसकी बुआई करें, उसमें भी 2.5 ग्राम मैनकोजेब जो है प्रति किलोग्राम बीज की दर रखें, और साथ साथ में जो बीज की दर है वो भी 4 से 5 किलोग्राम रखें, और लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर रख के बुआई करें, जिससे अपनी अच्छी क्रियाएं हो सकती हैं। साथ साथ में अपन जो है सरसों की बुआई भी जो है वो 15 सितंबर से अपन प्रारंभ कर सकते हैं
1: जी।
2: और उसकी जो उन्नत वर्तमान में जो किस्में हैं वो गिरिराज, पूसा सरसों 26, एनपीजे 112 और आरआरएन 573 जो है, इसकी बहुत ही अच्छी उन्नत किस्में हैं। और सरसों की बुआई के लिए भी आप जो है 4 से 5 किलोग्राम बीज की दर है वो आप प्रति हेक्टर के हिसाब से रखिए, और बीजों को जो है आप 2 ग्राम मैनकोजेब या 3 ग्राम थायरम नामक जो दवाई आती है उससे उपचारित करके बोइए, जिससे रोगों का जो है होता है। साथ साथ में आप चाहो तो बायो कंट्रोल भी इस पर अपन ले सकते हैं, जिसमें 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से यदि उपचारित करें तो वह और भी उपयोगी रहेगा, और उससे जो है रोग कीट कम लगेंगे और अपना उत्पादन अच्छा हो पाएगा। तो किसान भाइयों इस पखवाड़े में जो मुख्य अपने फसलों बुआई का जो था वो आपको बताया, तोरिया की, सरसों की और तारामीरा की, इनकी बुआई आप प्रारंभ कर सकते हैं
1: जी। बरड़िया जी, यह तो बात हुई अपने मुख्य मुख्य फसलों की बुआई की और उनके उपयुक्त समय और उन्नत किस्मों की, पर अब बात कर लेते हैं खरीफ फसल में तिल की फसल की। बुआई की गई तिल की फसल के प्रमुख कीट और रोग और उनका नियंत्रण अपने किसान भाई कैसे करें?
2: किसान भाइयों देखो, अपन ने जिन किसान भाइयों ने खरीफ के अंदर जो है तिल की फसल बोई है उसमें इस पखवाड़े में जो है मुख्य जो रोग और कीट लग सकते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो तिल के अंदर गाल मक्खी नामक जो कीट है वो प्रमुख इस समय लगने की संभावना पूरी रहती है, जिससे फलियां जो है वो लट्टों के कारण गांठ का रूप धारण कर लेती है और वो सूखने लग जाती है और उसका जो है फल उसमें बनना कम हो जाता है। इसके लिए जो है आप क्यूनोलफॉस नाम की दवाई आती है 1.5% चूर्ण वाली, वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप उसका बुरकाव करके और गाल मक्खी जो है उसका नियंत्रण अपन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी अपन ये बात करें कीट की, तो फली छेदक नामक जो कीट है वो भी इस समय लगने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए जो है क्यूनाल्फास 25 सीसी नामक दवा जो आती है वो 1 लीटर प्रति हेक्टर की दर से जो है आप घोल बना करके और छिड़काव करें, और आवश्यकता हो तो 15 दिन के अंदर अपन दोहरा भी सकते हैं छिड़काव को। और इसमें जो प्रमुख रोग इस समय लगने की संभावना रहती है वो पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग लगता है। ये रोग जो होता है पत्तियों के अंदर जो है ऊपर की सतह पर सफेद चूर्ण जो है वो काफी दिखाई देता है, जिससे पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन जो है कम होता है। इसका नियंत्रण जो है अपन करना चाहें तो 20 किलोग्राम जो गंधक आती है वो प्रति हेक्टर से बुरकाव करके और अपन पाउडर मिल्ड्यू नामक जो रोग है उसका नियंत्रण अच्छे प्रकार से कर सकते हैं और तिल के उत्पादन को अपन बढ़ा सकते हैं।
1: तिल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग नियंत्रण की अपन ने बात करी और किस तरीके से अपन इसका बचाव कर सकते हैं ये भी पवन कुमार बरड़िया जी ने अभी हमें बताया। आगे हम जानना चाहेंगे आम के मुख्य रोग और उसमें लगने वाले रोगों से किस तरीके का नियंत्रण अपने किसान भाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
2: जिन्होंने आम की खेती कर रखी है, आम के जो है प्लांटेशन कर रखे हैं, तो ये जो पखवाड़ा है अपना उस पखवाड़े में आम के अंदर मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो माता बंधन।

0: जिसको कि माल फॉर्मेशन भी कहते हैं, वो प्रमुख रोग इसमें लगता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो पुष्पकर्म होता है वो छोटी छोटी पत्तियों के गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं, जिससे उसमें फल बनना जो है वो रुक जाता है और उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें फल नहीं बन पाते हैं, जिससे कि उत्पादन बहुत कम होता है। इसके नियंत्रण के लिए जो है आप बोर्ड मिश्रण जो है वो 200 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और इसका छिड़काव कर दें, और साथ साथ में आप चाहें तो जो इसके थाले बने हुए होते हैं उनमें भी यदि अपन नियमित रूप से अगर निराई गुड़ाई करते रहें तो भी ये माथा बंधना का नाम जो रोग होता है वो बहुत कम लगता है और अपने जो है पुष्पकर्म है वो अच्छे बन पाते हैं, जिसमें फलों का उत्पादन अच्छा हो पाएगा।
1: जिन किसान भाइयों ने पपीते के बगीचे लगा रखे हैं उनमें अगर अभी कीट रोग का प्रकोप हो जाए तो किस तरीके से अपने किसान भाई उन रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं?
0: किसान भाइयों जिन्होंने पपीते की खेती की हुई है, पपीते के पौधे लिए हुए अपने खेतों में, तो वो पपीते के जो पौधे हैं उनमें आप अच्छे प्रकार से निरीक्षण कर लें, क्योंकि पपीते में इस समय जो है मोजक विषाणु नामक जो रोग होता है वो मुख्य रूप से जो है पनपता है। उससे क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, गुंडी का रूप ले लेती है, और उसके सिकुड़ने से जो है उसकी पौधे की वृद्धि रुक जाती है, फलों का विकास रुक जाता है और अपना उत्पादन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये रोग के लक्षण अगर कहीं अपने को खेत में दिखे तो आप तुरंत ही जो है एक एसीफेट नाम की दवाई आती है
1: जी,
0: वो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके तुरंत उसका जो है आप स्प्रे करवा दें, और यदि आवश्यकता हो तो दोबारा अपन 15 दिन के अंतराल पे स्प्रे फिर करवा सकते हैं। ये करने से तुरंत ही जो ये मोजक नामक रोग जो होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, रुक जाता है, और अपने जो पपीता है वो फल अच्छा पनपता है, अच्छा विकास होता है और अपना अच्छा उत्पादन अपन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों इस समय आप जो है ये रोग जो है उसका अच्छे प्रकार से निरीक्षण करके और जैसे ही आपको लक्षण दिखे इसका तुरंत रुकाव करिए।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम किसानवाणी में हम बात कर रहे हैं इस पखवाड़े के मुख्य कृषि कार्य के बारे में। आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं पवन कुमार बरड़िया जी, सहायक निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर में आप पदस्थापित हैं। पवन जी, अब आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि जिन किसान भाइयों ने नींबू के बागीचे लगा रखे हैं अगर उन बागीचों में कीट रोग का नियंत्रण करना हो क्या उपाय अपना सकते हैं?
0: किसान भाइयों जिन्होंने नींबू के पौधे लगा रखे हैं तो नींबू में क्या होता है किसान भाइयों कि अपने मुख्य रूप से जो इसमें रोग लगता है वो कैंकर नामक रोग लगता है
1: जी।
0: इस कैंकर नामक रोग से क्या होता है कि जो अपने फल होते हैं उसमें जो कोर्कनुमा जो धब्बे पड़ जाते हैं भूरे रंग के, उस धब्बों के कारण अपने को जब इसको मार्केट में अपन लेके जाते हैं बेचने के लिए तो उन धब्बों की वजह से देखने से अपने को इसकी जो रेट है जो दर है वो बहुत कम मिलती है। तो कैंकर नामक रोग है, इसका रोग का नियंत्रण अपने को करना चाहिए जिससे कि ये रोग आगे नहीं बढ़े और अपने को मार्केट में अपन जब भी इसको बेचने के लिए जाएं तो अपने को जो अपना उत्पादन है उसका उचित दाम अपने को मिले, अच्छा उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों इसके नियंत्रण के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक एक दवा आती है जिसका 200 से 250 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे कर दीजिए और फिर दोबारा एक बार उसका 10-12 दिन बाद में खेत का निरीक्षण कर लीजिए। यदि फिर भी खेत में दोबारा उसका प्रकोप और दिखाई देता है तो 15 दिन के बाद में एक बार इसका पुनः अपन छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ये कैंकर रोग जो है वो प्रभाव कम हो जाएगा और अपना जो फल है उसमें धब्बे नहीं होंगे, जिससे अपने को अच्छा उत्पादन मिलेगा और मार्केट में इसकी अच्छी रेट मिलेगी
1: जी। श्रोताओं, अभी इस पखवाड़े के मुख्य कृषि कार्य के बारे में जाना और जाना कि फसलों का बुआई का समय कौन सी उपयुक्त किस्में और क्या उनका उपयुक्त समय रह सकता है जिससे कि पैदावार भी अच्छी हो और फसल अच्छी हो, तो आगे अब पवन कुमार जी से ये जानना चाहेंगे कि इस पखवाड़े में बोई जाने वाली सब्जियों की अगर अपन बात करें तो सब्जियां और उनकी कौन सी उन्नत किस्में अपने किसान भाई ले सकते हैं जिनसे अच्छी पैदावार उनको मिल सके?
0: देखो किसान भाइयों इस समय यदि अपन सब्जी लेना चाहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अपन जो है मटर और जो मूली सब्जी है वो उसकी अगेती खेती जो है वो अपन प्रारंभ कर सकते हैं
1: जी।
0: अगर अपन अगेती खेती करेंगे तो अपना जो उत्पादन है वो अगेती होगा और बाजार में जो है उसकी रेट अपने को अधिक मिलने की संभावना रहती है। तो मटर के अंदर अपन बात करें कि अपन 15 सितंबर से यदि अगेती बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्नत किस्में कौन सी होगी जिससे कि अपने

0: अच्छा उत्पादन मिले। तो मटर की जो एक तो है अरकेल, एक है लिंकन, पंजाब 88, जवाहर मटर 3 और पूषा प्रगति नामक जो मटर की किस्में हैं ये उन्नत किस्में हैं, अगेती किस्में हैं। इनको अपन इस पखवाड़े में बुआई करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस मटर की बुआई के लिए अपने को बीज की जो दर है वो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी है और इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रख करके इसका अपन अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे कि लाइन से लाइन की बुआई करने में अपने को बाकी की जो कृषि क्रियाएँ हैं वो भी अपन आसानी से कर सकें और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी अपन बात करें तो मूली जो है, मूली की भी अगेती जो किस्में हैं उसकी बुआई अपन इस समय प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें जापानी ज्वाइट, पूषा रेशमी, पूषा देसी और अर्का निशांत नामक जो इसकी उन्नत किस्में हैं वो अगेती किस्में, इनकी अपन इस समय बुआई आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जो बीज दर है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी उपयुक्त रहेगी और इसकी भी जो लाइन से लाइन की दूरी जो है अपन 3 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रख करके बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन अपन ले सकेंगे। तो ये अगेती अपन सब्जियां उगा करके भी जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी को किसान भाई बढ़ा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सा, अगर किसान भाई समय पर और समय से पहले अगर अपने कृषि कार्य संपन्न कर लेते हैं तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और उससे होने वाले मुनाफे में से भी उनको बहुत फायदा होगा। श्रोताओं, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पवन कुमार बरड़िया, सहायक निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर में आप पदस्थापित हैं। आप कार्यक्रम में पधारे और इतनी बेहतर तरीके से श्रोताओं को इस पखवाड़े में मुख्य होने वाले कृषि कार्यों के बारे में जानकारी दी। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो अनीता बहन, देखो जानकारी तो आपने ले लिया कि की तरीका से छोटा छोटा कामन है, छोटी छोटी चीजा को ध्यान रखकर आप ई पखवाड़ा का कृषि कार्य ने निपटा सका जा।
1: जी,
5: तो देखो आप पवन कुमार जी ने धन्यवाद भी दे दिया, पर धन्यवाद आपा कोरो कोरो कौन देवा अपना कार्यक्रम की रीत को ने, तो सुनवा देवा एक बढ़िया सु गीत।
1: बिल्कुल सर।
6: गांव वाला भाई, ओ राम राम।
7: राम राम।
6: तो देखो गांव चढ़ा लावणी आगा से एक पटेल पटेल ने कहीं खेरियो दे
8: काई करे दे

0: रविवार शाम 7 बजे सुनिए ग्राम भारती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: हाँ तो अनीता मैंने देखो गीत तो आपने सुन लिया, पर गीत सुनता सुनता आपनो जो कार्यक्रम है बीको भी टेम पूरा हो तो चले हुए। तो अपना किसान साथिया से यही कहवा कि गीत में अपना कार्यक्रम में जो भी जानकारी आपने मिली भी ने सुननो ही कोने भी ने गुणनो भी है।
4: बिल्कुल सा। और जिया की देखो मौसम बदलतो रहे छे, तो अभी जिया चेतावनी छे बारिश की भी, कई जगह हो भी रही छे कई जगह नहीं हो रही। तो अपना किसान भाई ने मौसम का हिसाब से भी ध्यान में रखनी चाहिए और फसल को जिया ध्यान रखना चाहिए, वहाँ सभी बातों को वह ध्यान रखे
3: जी सर। तो कार्यक्रम किसान वाणी ने देवा अठे ही विराम आज्ञा दियो अभिलाषा
4: और अनिता ने
3: चालना और करा राम राम, राम सा।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
3: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक या पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्द की निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र।
1: जी धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के

0: स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का पहला नगमा मुकेश की आवाज में है। फिल्म का नाम आबरू।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है कोहिनूर लंगा का गाया ये लोकगीत गौरबंद।

0: अभी आप माटी के स्वर कार्यक्रम में कुछ लोकगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बताया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान, करीब 73% वोट डाले गए। राज्य में बारिश का नया दौर शुरू होने से कई हिस्से तर, मौजूदा मौसमी तंत्र का असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना। और गणेश महोत्सव को लेकर प्रदेश में उल्लास और भक्ति का माहौल, बाबा रामदेव मेला कल से शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। सम्मेलन के समापन भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। उन्होंने कहा कि इन संकल्पों को परिणामों में बदलना सबकी साझा जिम्मेदारी है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
2: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि बदलती दुनिया को पुराने संस्थानों से निर्देशित नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण में सुधार पर जोर दिया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों में ग्लोबल साउथ देशों की समान भागीदारी होनी चाहिए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर आधारित सत्र के उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के जरिए सभी पहलुओं और परिणामों की निगरानी करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने भारत की अगुवाई वाले इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता प्रथम के दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में भारत ने ब्रिक्स सहयोग को आम जनता से सीधे जोड़ने पर बल दिया है।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला।
2: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सभी ब्रिक्स देशों के नेताओं का भारत की धरती पर आगमन का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सहयोग, संवाद और साझा प्रगति का नया वैश्विक अध्याय लिख रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस समारोह का आयोजन देश भर में 23 केंद्रों पर किया गया। समारोह में श्री मेघवाल ने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 1700 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है। इससे इज ऑफ लिविंग के साथ ही विश्वास आधारित शासन को नई गति मिली है।
4: 1725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं, उनको हमने समाप्त किया। 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया। इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया। 717 प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना।
2: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नगरीय निकाय चुनावों में राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह से मुलाकात कर बधाई दी और इस उपलब्धि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में दो चरणों में हुए मतदान में लगभग 73% वोट डाले गए। सबसे अधिक 91.59% वोटिंग बालोतरा जिले के धोरी मन्ना की नगर पालिका में हुई। हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला नगर पालिका में भी 90% मतदान हुआ। इस बीच मतगणना प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आयोग की ओर से मतगणना को लेकर विभिन्न स्तरों की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 14 सितंबर को होने वाली वोटों की गिनती के लिए पर्यवेक्षकों और गणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूस में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ब्यावर की ऐश्वर्या यादव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। येकातेरिनबर्ग में ये महोत्सव 17 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान ऐश्वर्या वाद विवाद तथा विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगी। उनकी इस उपलब्धि से ब्यावर शहर में खुशी का माहौल है। जिला कलेक्टर कमलराम मीणा ने भी इसके लिए ऐश्वर्या और उसके परिवार को बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से आज भी कई जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल भी अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, बालोतरा, भरतपुर और भीलवाड़ा सहित 29 जिलों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, पाली, बारां, बीकानेर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में आंधी बरसात की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर और पावटा में आज कुछ देर मूसलाधार बारिश हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा और आसपास के इलाकों तथा सलुम्बर में ठंडी हवाओं के साथ थोड़ी देर रिमझिम बारिश का दौर चला। बरसात और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में आई गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।

0: नए मौसम तंत्र का असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों यानी जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बरसात के भी आसार हैं। बारिश के इस दौर को देखते हुए खरीफ फसलों को भीगने से बचाने के लिए किसानों को समुचित उपाय करने की सलाह दी गई है। साथ ही कीटनाशकों और अन्य रसायनों का छिड़काव भी बारिश की संभावना को ध्यान में रखकर करने का परामर्श दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक डीग और धौलपुर दो ही जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी बरसा है। सवाई माधोपुर, अजमेर, अलवर और बीकानेर सहित 23 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। वहीं जयपुर और उदयपुर सहित 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। सबसे कम बरसात पाली जिले में हुई है। प्रदेश में किडनी रोगियों को आसान और निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मरीजों को समय पर और नजदीकी अस्पतालों में ही डायलिसिस सुविधा मिले, इसके लिए सरकारी संस्थानों के साथ ही निजी जन सहभागिता और CSR के सहयोग से इन सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इस पर और ब्यौरा न्यूज डेस्क से।
1: प्रदेश में अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों को निशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन मरीजों को 1,17,000 से ज्यादा डायलिसिस सेशन दिए जा चुके हैं। इस उपचार सुविधा की कुल लागत 21 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 35 जिला चिकित्सालयों में 149 डायलिसिस मशीनें संचालित की जा रही हैं। डायलिसिस की जरूरत वाले रोगियों को दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए जिला अस्पतालों के साथ ही अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इस महीने 78 और चिकित्सा संस्थानों में डायलिसिस सेवा शुरू होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: गणेश चतुर्थी पर्व और गणेश महोत्सव को लेकर प्रदेश में उल्लास और भक्ति का माहौल बना हुआ है। गणेश मंदिरों में सजावट और रोशनी की जा रही है। कहीं मूर्तिकार प्रतिमाओं के श्रृंगार को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो कहीं लोग अपनी पसंद के बप्पा की प्रतिमा तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाएं सजाई जा रही हैं। गणपति बप्पा के आगमन के लिए पांडाल लगाए जा रहे हैं और हलवाइयों द्वारा मोदक तथा लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस उपलक्ष्य में मोदकों की आकर्षक झांकी सजाई जा रही है। इस बीच सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले का आज ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस लक्खी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा और सलुम्बर के सराड़ा मंदिर सहित कई स्थानों पर गणेश महोत्सव रखे गए हैं। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला कल से शुरू होगा। जैसलमेर जिले में बाबा के समाधि स्थल रामदेवरा पर मंगला आरती के साथ ही मेले की शुरुआत होगी। मेले में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ ही प्रभावी निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। उधर बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के रामदेरिया गांव में अवतार धाम पर कल से भादवा मेला लगेगा। उधर पाली के घूमटे स्थित बाबा रामदेव का भादवा मेला कल से भरेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बताया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान, करीब 73% वोट डाले गए। राज्य में बारिश का नया दौर शुरू होने से कई हिस्से तर, मौजूदा मौसमी तंत्र का असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना। और गणेश महोत्सव को लेकर प्रदेश में उल्लास और भक्ति का माहौल, बाबा रामदेव का मेला कल से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख समाचार एकांश ने तैयार किया है। जिले में बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण, पेयजल और अन्य गतिविधियां आयोजित

0: जीत हुई। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जिले के 5 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान हुआ। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम, वन महोत्सव और खेल आयोजन हुए। प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत दौसा, लवाण, रामगढ़ पचवारा, लालसोट और मंडावरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कल मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने दौसा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वाहनों और व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वॉलंटियर्स ने भी मतदान में सहयोग दिया। इससे पहले मतदान दलों के प्रशिक्षण और रवानगी की व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया। पहले चरण के चुनाव के तहत 9 सितंबर को मतदान हुआ। दोनों चरणों में मतदान पूरा होने के बाद अब 14 सितंबर को मतगणना होगी। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज दौसा में विकसित भारत विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेंद्र वर्मा और उप प्राचार्य डॉ. राजेंद्र यादव ने विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र के समग्र विकास को लेकर विद्यार्थियों से चर्चा की। इस दौरान ऑनलाइन क्विज में भी विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिले के विभिन्न स्कूलों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम के तहत न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को विधिक जानकारी दी। छात्र छात्राओं को अजनबी से सावधान विषय पर बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल खेड़ला खुर्द में जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हुआ। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजेश पायलट स्टेडियम में विभिन्न खेल गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये आयोजन स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ। महवा में आयोजित सीबीएसई कबड्डी गर्ल्स स्टेट क्लस्टर टूर्नामेंट में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों और रेफरी से परिचय प्राप्त किया और टॉस करवाकर मैच देखा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के विकास पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने जिलाधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने जिले में टीबी, नशा मुक्ति और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने टीबी मरीजों को समय पर पूरा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही नशा मुक्ति के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात प्रबंधन में सुधार के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अस्पतालों में पीएम राहत पोर्टल सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए। जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति और सतत विकास लक्ष्य मॉनिटरिंग समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में हर जन्म और मृत्यु का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पहचान पोर्टल पर लंबित ई साइन का भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। पेयजल योजनाओं के हस्तांतरण के अवसर पर जल अर्पण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ने पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की लोगों को शपथ दिलाई। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन सुना गया। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। दौसा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। ब्रिक्स सदस्य देश सगला री एक राय नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का न्यू ब्रिक्स री सदारत न जन केंद्रित बताई। प्रदेश माए भया नगरीय निकाय चुनाव माए हाल ताई रसबू बत्ता करीब 73% वोट पड़िया। राज्य में बारिश रो नुवो दौर शुरू हो 16 सितंबर ताई बिरखा चालती रहवण रा आसार और प्रदेश में गणेश महोत्सव रो उमाव और भक्ति रो माहौल लोक देवता बाबा रामदेव रो मेलो ही काल शुरू भेला समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 रा पहला ही दिन आज ब्रिक्स सदस्य देश एक रायों नई दिल्ली घोषणा पत्र अपना लिनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओ घोषणा पत्र अपनावन रो प्रस्ताव पेश कीनो हो सम्मेलन रा समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी कहो के ओ घोषणा पत्र सदस्य देशां रा भेड़ा संकल्प री साफ दिशा बतावे है वे कहो के आ संकल्पा ने नतीजा माई बदलन री सगला री भेड़ी जिम्मेदारी है
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है
1: नई दिल्ली रा भारत मंडपम माय राखी ज्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन माय प्रधानमंत्री मोदी कहो के बदलती दुनिया ने जूना संस्थानों नी चलाई जा सके है वे नुमाइंदगी जवाबदेही और नियम बनावन रा काम माय सुधार माथे जोर दीनो श्री मोदी कहो के आवता भगत री प्रौद्योगिकी और वन काबू करण वाला नियम माय ग्लोबल साउथ देशां री बराबर भागीदारी फेवनी चाहिए इनो पहली सत्र रा उद्घाटन भाषण माय श्री मोदी ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र रो प्रस्ताव पेश कीनो व कहो के ओ तंत्र तीन पखा रा ट्रोइका रे जरिए सगली पहला और नतीजा री निगरानी कर सकेला प्रधानमंत्री भारत री अगुवाई वाला ई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने ऐतिहासिक उपलब्धि बतायो व कहो के ब्रिक्स समूह री भारत री सदारत जन केंद्रित और मानवता प्रथम रा नजरिया माथे आधारित है श्री मोदी कहो के लचीलापन नवाचार सहयोग और थरता माथे भारत रो सबो बतो ध्यान है
2: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला
1: केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI रा दीक्षांत समारोह में शामिल भया देश भर में 23 ठोणा राखी ज्या इन कार्यक्रम में नुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इंस्टीट्यूट री सदस्यता रा सर्टिफिकेट दिया चिया इ मौके मेघवाल कहो कि लाडला कुछ बरसा में 1,732 जूना और बेकार कानून खत्म करी चिया जिणु ईज ऑफ लिविंग सागे विश्वास आधारित राज ने नुवी रफ्तार मिली है
3: 1,725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं उनको हमने समाप्त किया 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ लिविंग ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जनविश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया हमारा अप्रोच स्पष्ट है छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाल ही मायविया नगरीय निकाय चुनाव माए प्रदेश माए हाल ताई रा सबो 32 मतदान प्रतिशत माथे खुशी जताई है वे आज राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह सागे मुलाकात कर आ उपलब्धि हासिल करण सारू वाने बधाई देता थका राज्य निर्वाचन आयोग री कोशिशां री सराहना कीनी प्रदेश रात 309 नगरीय निकायां माए

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुर्खियों में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और मुख्य

0: Surgióme. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉक्टर पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूँ।
1: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
1: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
3: जी, बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे

0: करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं, जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन या जो घोषणा पत्र है,
1: जी
0: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था, जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा।
1: जी
0: क्योंकि आपको याद है, जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था, रूस और यूक्रेन का युद्ध का। और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे। परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था। और वो उस 2 दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से
1: जी
0: उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया। और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था, जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये 3 देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें 3 देश जो इसमें भागीदार हैं। ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहां पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, जो यहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए। तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था,
1: जी
0: जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा
1: जी
0: था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं, जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
1: बिल्कुल
0: जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए,
1: जी
0: निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में।
1: जी
0: तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है, जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अम्बेसडर सज्जन हार को सुना, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
2: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में, और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई। और
1: जी
2: जो

0: कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही, तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस
1: जी
0: ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टेचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं
1: जी
0: उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म
1: जी
0: की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने एक बहुत एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अब ये समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
1: अम्बेसडर सज्जन हार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
3: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
1: जी
3: ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शंस इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न है,
1: बिल्कुल
3: हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ।
1: जी
3: तो जो उन्होंने कहा है, जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
1: बिल्कुल
3: 40% है इसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं, रूस पहले था, अभी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया सभी मिलकर आ गए हैं। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है, परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, जो ये गुट, हालांकि इसमें इतनी विविधता है परंतु फिर भी ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं। और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
3: परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटरी रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
2: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है, तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इसमें?
0: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है और मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इशूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों पर पड़ रहा है, जो सबसे जो विकासशील देश उन पर पड़ रहा है, और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे, और बड़ी शक्तियां ये बात बिल्कुल सही है नहीं सुन रही हैं। तो कहां उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स की एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के

0: डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल शेपर से रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भारत की, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपनी अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल
1: जी
0: साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये बहुत, ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात, अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि UNSC है, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
2: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है, और ये कितना जरूरी हो गया है।
3: जी, बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो वहां पर पीस, सिक्योरिटी, शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में। अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है। और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में,
1: जी,
3: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपने जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उनको
1: उनको आवाज नहीं मिल रही, जितना योगदान है उतनी आवाज नहीं मिल रही।
3: उतनी आवाज नहीं मिल रही और उसको जरूर मिलना चाहिए।

0: जी, एक जी। और बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेयरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुनते हैं क्या कहा।
1: सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिपेक्ष में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है?
2: ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब्ड हो रही हैं, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है, और ग्लोबल कॉमर्स जिस तरह से डिस्टर्ब होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रहे हैं, तो कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध लड़ रहे हों, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है। और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा।
0: जी, अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं, और उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
0: अम्बेसडर सज्जनहार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे, और जो

0: हमारे संबंध थे राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स
1: जी
0: की समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ। और फिर पिछले साल त्यानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। परंतु आज ये मुलाकात हुई और मैं समझता हूं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूँ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में। और आज की मुलाकात में देखता हूँ, देखिए मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के
1: जी
0: द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रेंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में,
1: जी
0: 2020 में तो गलवान हुआ।
1: बिल्कुल
0: तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए
1: जी,
0: और वहां पर शांति रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
1: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ जो इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हाँ जी अनुभा,
1: जी आनंद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
2: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो
1: जी
2: स्मारक डाक टिकट भी जारी किए।
1: जी
2: सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभव,
1: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए?
3: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से मिलें
1: जी
3: और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी
1: जी
3: बता रहे थे, कल भी वार्ताएं होंगी,
1: बिल्कुल
3: लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है,
1: जी
3: वो मुझे लगता है अपने आप में भारत भारत का भी एक

0: जो अब बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी, और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
1: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
3: सुर्खियों में
4: नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और मुख्य गतिविधियां। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म गज़ल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: शनिवार की शाम आप सभी के नाम। जी हाँ, कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ आ गए हैं हम आपका मनोरंजन करने और आपको आप ही की पसंद के गीत सुनवाने। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है हेलो फरमाइश, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आज आपके साथ विकास। कहिए साथियों, क्या हालचाल है? चलिए हालचाल भी जान लेंगे आप आपसे बातें करते करते। तो रिसीव करते हैं आज का ये पहला फोन कॉल। हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: जी
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी बताइए, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: बस बैठे हुए हैं, फोन लगा रहे थे आपको।
0: तो बता दीजिए आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: और आप कैसे हो?
0: बढ़िया है।
1: फिल्म का नाम है साजन की बाहों में।
0: हाँ
1: गाने के बोल हैं, कोई क्या पहचान है उसका गम जाने।

0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: पूनम चंद बोल रहा हूँ, गांव भोजपुरी, जिला नागौर, तहसील देव से। अभी
0: हाँ पूनम चंद जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: तो कुछ नहीं करते हैं सर, मोटे की सीजन चल रही है, मोट पड़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है सर।
0: बारिश की तो देखो इस बार सब जगह ही कमी है।
1: हाँ जी,
0: और बताइए और क्या करते हैं आप?
1: आप तो अभी माठ की तैयारियां चल रही है, मूंग की और माठ की पड़ा नहीं,
0: अच्छा,
1: बारिश नहीं इतनी दे रही है, बारी हो ही नहीं।
0: ये बात है। बारिश
1: और आपके
0: सबके
1: गांव का नहीं, कैसी है बस बारिश?
0: वर्षा ठीक ठाक ही है, कम ही है।
1: हाँ तो मैंने देखो, पहला भतीजा और बहन का नाम लेना चाहूँ। देखो
0: हाँ लीजिए लीजिए।
1: मेरी एक बहन सीता, एक मेरी बहन जामी, एक मेरे भतीजी है तमन्ना, और बाकी किरण, और मां सब ने सुना हरे राम हरे कृष्णा फिल्म का गीत, कहता मेरा प्यार है साता।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार जी साहब, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं निजामुद्दीन थेली बोलूँ, सा गुजर।
0: निजामुद्दीन जी, बताइए क्या हाल है आपके?
1: असल बढ़िया साहब, अब देखो खेती वालों काम आई गए घुमार बड़ा। आज तो रीटा
0: अच्छा,
1: दौड़ा कपास आजी,
0: कैसा है गुमार आपके?
1: बहुत बढ़िया
0: बढ़िया है।
1: सा।
0: अच्छा, क्या भाव है गुमार के?
1: गंवार के पास 5500 तक, 5000 तक।
0: 6,000 तक है भाव? अच्छा,
1: हाँ सर,
0: तो बताइएगा आज गाना कौन सा सुनवाना है आपको?
1: गाना तो एक सुनाई दी, मैं दो चार नाम ले लूँ।
0: हाँ, ले लो ले लो।
1: एक राजू माली है, एक अनारदीन है, एक मामा है, एक राम सिंह है, गंवार बड़ा हो गया।
0: चलिए,
1: अपने
0: तो बता दीजिए, गाना भी बता दीजिए।
1: तो अपने होते हैं सर, वो सुना दीजिए।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो परमेश
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गोपाल राम डॉक्टर बोसेरी
0: कहाँ से, कौन सा गांव बताया?
1: गांव बोसेरी।
0: बोसेरी से। गोपाल
1: हाँ
0: बताइए, क्या करते हैं आप?
1: बस कुछ नहीं, मोट पड़ा,
0: मोठ पाड़ रहे हैं? कैसे हैं मोठ आपके?
1: मोट ठीक ही है, बरसात होने के कारण
0: बरसात की कुछ कमी रह
1: ठीक
0: गई है ना? हाँ, और बताइए साहब, क्या करते हैं?
1: है। और कुछ नहीं कर, पढ़ाई करते हैं हम।
0: अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं? हाँ?
1: हाँ
0: अच्छा,
1: वो तो ये आप अपनी पसंद से सुनो ना।
0: चलिए साहब, सुनिए अपनी, हमारी और आपकी दोनों की पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, नागौर
1: कहाँ से? हाँ
0: शहर से है। मोहम्मद
1: बताइए, नाम बताइए, बता अपना।
0: इकबाल चौहान।
1: हाँ चौहान साहब, बताइए क्या करते हैं आप?
0: हम तो काम चले गए पहले, अभी दुकान चलाते हैं। हाँ
1: अच्छा, कार्यक्रम सुनते हैं हमारे?
0: कल तो फरमाइश वगैरह सब सुनते हैं।
1: अच्छा तो बताइए
0: काफी
1: आप।
0: लोग पूछे क्रिकेट वगैरह,
1: अच्छा, बचपन से ही शौकीन है?
0: बचपन से शौकीन हूँ, बचपन से शौकीन
1: अच्छा तो बताइए आज आपको क्या सुनवा दें?
0: हूँ। अभी मेला मेल में थोड़ा

तो श्रोताओं, ये तो था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम, जिसे आप तक पहुंचाने में सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। और अब मैं विकास आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम चिरमी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में कुछ लोकगीत।

अभी आप लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम चिरमी में कुछ लोकगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर।

एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है,

0: बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इसके पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार

0: तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीत। यह प्रोग्राम का पहला नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में है। फिल्म का नाम बॉबी।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म प्रेम पुजारी के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आज आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती के स्टूडियो मुंबई। तो सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: कहते हैं अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म गदर 2 से। आवाज़ें विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल लिखे थे यंगवीर रोहताश गैक्सिनिया ने और संगीत ऋत्विक कलछिलकर शाइन और राज मावेर का था। इसी के साथ ही कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हिंदी फिल्म संगीत के समुद्र में गोता लगाएं तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

दरअसल शंकर जय किशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जय किशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जय किशन है चांद।

संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाने लगे। आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाडी लाल जी से हुई। फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

प्रकृति का खेल देखिए कि कुछ ही समय के बाद जयकिशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जयकिशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीत का जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते थे।

रोचक बात यह है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहाँ से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर करें।

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

दरअसल जय किशन रूमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

जय किशन ने प्रेम विवाह किया था। वे बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुने बनाने के साथ साथ जय किशन शायरी और कविता के भी बड़े शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था,

दोस्तों, ये जिक्र उन गीतों का है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने बनाई थी। फिल्म दिल अपना और प्रीति पराई।

दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीतकार जयकिशन एक सीधे साधे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जयकिशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

सन 1971 में 39 वर्ष की छोटी आयु में संगीतकार जय किशन ने इस संसार को अलविदा कह दिया।

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।